इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

0: दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बगत
1: वलियो वहीं बोजाओ आक्षिव भजन यूजन लिखमुच्छो श्री राजेश रैना सबन आवाज दिसमुच कैसर निजामी सबन।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: पर
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
3: जी हाँ, आज सोमवार है। आप जहाँ भी है अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा एपिसोड 9। आज के मेहमान श्री अंकुर अरोरा जी से बात करेंगे भारत सपोरी। विषय है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रस्तुत करेंगे भारत सपोरी।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं एक और एपिसोड कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। आज हम स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में बात करेंगे दवाइयों के बारे में, जो हम आमतौर पर बीमार होने के बाद चिकित्सक से परामर्श करने के बाद लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल के लिए दवाइयों का उपयोग अक्सर जरूरी होता है। दवाइयों का उपयोग व्यक्ति के रोग और उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक रोग होता है और वो उससे सही ढंग से नियंत्रित

0: आदतों से बचना और नियमित चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है। पर आज हम इस कार्यक्रम में आज के मेहमान से बात करेंगे दवाइयों के बारे में। जब डॉक्टर हमारे लिए परामर्श के बाद दवाइयां लिखते हैं, आइए आज हम उन दवाइयों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं एक विशेषज्ञ जो दवाई वितरित करते हैं और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत। आज के स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना पर। हमारे साथ मौजूद है अंकुर अरोड़ा जी, जो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और देश के जन औषधि केंद्रों की जानी मानी हकीकत को नजदीक से जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान श्री अंकुर अरोड़ा जी का। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, और रेडियो वितस्ता के श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: अंकुर जी, शुरुआत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना क्या है और इसका मकसद क्या है।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य है सस्ती गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं जनता को उपलब्ध कराना। यह योजना 2008 में शुरू हुई थी, इसे लेकिन नया बल मिला 2015-16 से, जब इसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में पुनः लॉन्च किया गया। इसके तहत पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती।
0: अंकुर जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जेनेरिक दवाई होती है उसकी और सामान्य दवाई में क्या अंतर होता है।
1: जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में कोई भी अंतर नहीं होता है
0: जी।
1: जो अंतर होता है वो सिर्फ प्रमोशन का होता है
0: जी।
1: ब्रांडेड दवाओं को प्रमोट करने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाते हैं
0: जी।
1: जो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर्स को अपनी दवाइयों के बारे में बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उनके ऊपर उनके मैनेजर्स होते हैं
0: जी।
1: फर्स्ट लाइन मैनेजर, थर्ड लाइन मैनेजर, तो उस सब के एक्सपेंस मिला के एक दवाई की कीमत तैयार की जाती है
0: जी।
1: जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है
0: जी।
1: वो बिल्कुल सेम होती है
0: जी।
1: इवन कि कई मैन्युफैक्चर बिल्कुल सेम नाम की ही जेनरिक दवाई बना रहा है और वही मैन्युफैक्चर ब्रांडेड दवाई भी बना रहा है।
0: मुझे जो समझ आ रहा है अंकुर जी, वो ये कि जब एक दवाई बनती है उसका एक बेसिक साल्ट होगा, हर कंपनी का अलग अलग नाम होता है। क्या जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत दवाइयां बेची जाती है, क्या उनका नाम अलग होता है या जो बेसिक साल्ट होता है उसके नाम से वो दवाई होती है।
1: एक्चुअली अभी जितने भी लोग हैं वो शायद इस चीज को अभी शायद जान नहीं पाए हैं, मैं आज ये बात क्लियर कर देता हूं आपके माध्यम से
0: जी।
1: जेनरिक दवाई को हम क्या बोलते हैं, एक ब्रांडेड दवाई है, कोई भी फेमस ब्रांड आप माइंड में सोचो, उसका जो जेनरिक नेम है दैट इज साल्ट, उसका जो केमिकल नेम है उसको जेनरिक कहा जाता है
0: जी।
1: बेसिकली जेनरिक नाम ही उसका केमिकल नेम है, साल्ट, जिसको हम साल्ट बोलते हैं आम भाषा में, तो उसी को जेनरिक बोलते हैं। और ब्रांड का नाम ही निर्धारित किया जाता है कंपनी के द्वारा, ब्रांड के नाम से ही तो ब्रांड फेमस होता है ना
0: जी। यानी कि एक जेनरिक दवाई के अलग अलग कंपनी की सेम दवाइयों के अलग अलग नाम हो सकते हैं
1: बिल्कुल,
0: पर जो जेनरिक साल्ट, जो उसको बेसिक साल्ट है, वो सारी दवाइयों में एक
1: ही होता है बिल्कुल।
0: आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है, जब इसको बनाया गया और लोगों के बीच में लाया गया, जो खास मकसद है वो क्या है।
1: देखिए, खास मकसद तो सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते
0: जी,
1: जिनके कारण वो वंचित रह जाते हैं बीमारी का इलाज कराने में
0: जी।
1: तो अब सपोज करो किसी मध्यम वर्ग के परिवार का कोई बुजुर्ग है जिसको हार्ट की समस्या हुई है
0: जी।
1: अब एक ब्रांडेड दवाई अगर वो डॉक्टर द्वारा जो लिखी जाती है वो बाजार से जाके खरीदता है, केमिस्ट पे खरीदता है, तो
0: जी।
1: उसकी जो कॉस्ट होती है
0: जी।
1: उसकी जितनी भी 5-7 मेडिसिन होती हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है
0: जी।
1: उसकी कॉस्टिंग 3,000-3,500 पर मंथ की होती है
0: जी।
1: अब उसकी आमदनी ही बेचारे की 10-15,000 है, वो कैसे अफोर्ड करेगा।
0: ठीक है,
1: तो सरकार का लक्ष्य ही यही था कि जन औषधि केंद्र खोले जाएं ताकि वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जैसे 3,500 या 3,000 की मैंने आपको बताया
0: जी,
1: उसकी बुजुर्ग की दवाई आती है मंथ की
0: जी,
1: अब वो जेनेरिक स्टोर से जाएगा खरीदेगा तो वही दवाइयां उसकी 500-700 के बीच में आ जाएंगी।

0: इस तरीके से उसका जो एक तो मंथली सेविंग भी जो उसके 2-2.5 हजार मंथ के बचेंगे, क्योंकि साल के 24 से 30 हजार रुपये हो जाते हैं सर।
1: जी, और साथ में उसको सस्ती दवाई मिलके वो अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकता है।
0: आज हमारे केंद्र में भी सर ऐसे जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो मेरे से यही, आपने जो प्रश्न पूछा वही ये प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि सर क्या फर्क है, मेरा बीपी ठीक तो रहेगा, मेरा शुगर ठीक तो रहेगा। मैं उनको बोलता हूं आप 30 स्टेप्स या मंथ की मेरे से कोर्स मत लो, आप सिर्फ 10 दिन का कोर्स लो और अपनी शुगर चेक करो।
1: ठीक है।
0: तो जो जुड़े हैं वो हटे नहीं, वो जुड़ रहे हैं और आगे नए नए लोगों को बता रहे हैं।
1: ये कुछ ऐसे भ्रम है, इन विषयों पर भी हम आगे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपके पास एक कस्टमर आता है दवाई लेने के लिए, तो आप जब उनको दवाई देते हैं, अब वो प्रिस्क्रिप्शन पर होती है या आप उस प्रिस्क्रिप्शन का साल्ट देख के उनको दवाई देते हैं?
0: ऑब्वियसली जब कस्टमर आता है या तो वो अपने घर से ब्रांडेड दवाइयों के पत्ते लेके आता है मेरे पास कि ये सर ये आपके पास मिल जाएंगी, हमने सुना है कि जन औषधि केंद्र खुला है तो एक बार तो वो इंटरेक्शन करने आता ही है, तो वो पत्ते ले, या तो वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है डॉक्टर की या वो हमें एक खाली स्ट्रिप्स दिखाता है दवाइयों की, ये मिल जाएगा। तो उसका हम जेनरिक नेम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया साल्ट, जैसे शुगर की दवाई है तो उसके अंदर क्या सॉल्ट होता है, सीटाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन, तो हम सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन उसको सेम स्ट्रेंथ का दे देते हैं।
1: जिससे उनको दवाई भी मिलती है और उनका जो कीमत है वो कम
0: वो
1: देनी
0: कम दे
1: पड़ती
0: रही
1: है।
0: है, इवन कि लोग बड़े आश्चर्यजनक हुए हैं उस टाइम पे जब मैंने उनको बताया सर ये कितने की है, मैंने कहा ये 60 रुपीज की है, तो एकदम से हैरान हुए सर ये तो मैं 280 रुपीज का पत्ता खरीदता था।
1: जी, आपने एक बात ये कही कि जब दवाइयां बनती है तो जेनरिक कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक जैसा होता है, पर क्योंकि जब वो ब्रांडेड दवाई बनती है तो जो उसके खर्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो खर्चे भी उसमें जोड़े जाते हैं।
0: बिल्कुल जोड़े जाते हैं।
1: कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हमारे देश में नहीं थी, तो तब तक हमारे पास ऑप्शन ये था कि जो भी दवाई हमारे पास लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा, हमें वही केमिस्ट से लेनी पड़ती थी। अब ये जो जानकारी है, ये किस तरीके से लोगों तक पहुंची, या आप इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इस योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
0: देखिए भारत ने जब भारत सरकार ने जब ये योजना तैयार की तो सरकार ने सिर्फ इतना सोचा कि आम जनता को सस्ती दवाइयां कैसे उपलब्ध कराई जाएं।
1: अंकुर जी, एक और प्रश्न मैं आपसे करता हूं। आप खुद कई आसपास के गांव के बारे में जानते हैं, क्या गांव के लोग भी जन औषधि योजना के बारे में जानते हैं?
0: अभी सिटीज में तो ये योजना आ गई है, बट गांव में अभी इतनी ज्यादा अभी जन औषधि केंद्र नहीं खुले हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है 2027 तक इसको 27,000 तक केंद्र और खोलने का, जिसमें कि गांव भी शामिल हैं,
1: जी, ताकि गांव तक भी
0: गांव
1: ये
0: और कस्बों तक भी ये पहुंचे।
1: पहुंचे। अंकुर जी, हम इस कार्यक्रम में बातचीत जारी रखे हुए हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत आपके जीवन में क्या मायने रखता है?
0: सर संगीत के बिना तो जीवन ही नहीं है।
1: तो इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को आपका कोई मनपसंद गीत सुनाना चाहते हैं और आपको भी, तो आपका कोई मनपसंद गीत हो जो हम श्रोताओं तक लेके जाना चाहते हैं।
0: सर वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा बहुत सारे गीत पसंद हैं, बट एक गीत जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है राहत फतेह अली खान साहब का है,
1: जी,
0: ओरे पिया।
1: तो अंकुर जी, क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए ये गाना गुनगुना सकते हैं?
0: ओके।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज आपसे बातचीत कर रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, और आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित मेहमान है श्री अंकुर अरोड़ा जी, जो एक दवाई वितरित करता है। आइए उनसे कुछ और प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जेनरिक दवाइयां क्या होती है।
1: सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जेनरिक दवाइयों को हम जो एक्चुअली उसका जो केमिकल या साल्ट नेम है उसी को जेनरिक कहा जाता है
0: जी।
1: अब सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ
0: जी,
1: जेनरिक दवाइयां और ब्रांडेड में फर्क क्या होता है
0: जी।
1: फर्क इतना होता है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आप कमजोर हैं सर, आपको दूध एक गिलास दूध सुबह पीजिए और एक गिलास शाम को पीजिए,
0: ठीक है।
1: अब यही बात एक डॉक्टर कैसे बोलेगा, एक गिलास दूध सुबह पीजिए एक गिलास शाम को पीजिए, लेकिन डेयरी का ही दूध पीना है,
0: ठीक है,
1: वो ब्रांड हो गया,
0: ठीक है।
1: ठीक है, अब आप डॉक्टर के कहने पर डेयरी पे गए तो डेयरी ने बोला कि मेरा दूध तो 100 रुपए लीटर है
0: जी,
1: ऑब्वियसली आप लोगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला डेयरी का दूध पीना,
0: जबकि साधारण दूध उससे बहुत कम कीमत का
1: है।
0: तो ये फर्क आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में क्या फर्क है।
1: मैं चाहता हूँ लोग भी इस चीज को समझें
0: जी।
1: अब तो जनता अवेयर है, पढ़ी लिखी है, अब तो समझना चाहिए जनता को इस चीज को। एक्चुअली में जो केमिकल है वही काम करता है, ब्रांड काम नहीं करता, उसका केमिकल काम करता है बॉडी के अंदर।
0: हमने अंकुर जी आपको इसीलिए आमंत्रित किया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि भारत सरकार की जो जन औषधि केंद्र है उसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने। अगर उनको मार्केट से दवाई लेनी है, अगर उसी लेवल की दवाई उनको कम कीमत पे मिल जाए, तो हम भी चाहते हैं कि लोगों का फायदा हो, और हम भी भारत सरकार की ओर से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लोगों तक लेके जाने का हमारा भी यही मकसद होता है। आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि जेनरिक दवाइयां कमजोर होती है या असर नहीं करती, आप इसके विषय में क्या कहेंगे?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है
0: जी,
1: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं
0: जी।
1: WHO ने आज तक कभी भी ऐसी टिप्पणी या कोई आर्टिकल्स नहीं दिया जिसमें ये कहा गया हो कि जेनरिक दवाई की गुणवत्ता कम होती है
0: जी।
1: अगर ऐसा होता तो WHO अब तक ये आर्टिकल जारी कर चुका होता
0: जी।
1: ठीक है, दोनों का मैन्युफैक्चर भी सेम है
0: जी,
1: दोनों दवाइयों का जो बना रहे हैं दवाइयां वो दोनों सेम है। ब्रांडेड दवाइयों का बस उसमें ब्रांड का नाम छप जाता है और उसकी MRP डिसाइड की जाती है बाय कंपनी
0: जी।
1: और यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, सरकार सिर्फ मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग करवा के पूरी गुणवत्ता के साथ जो जो एक ब्रांडेड कंपनी की होती है वो उसी के साथ ही दवाई मैन्युफैक्चर करवा के वो डायरेक्टली उन्होंने अपने हब से सीधा डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री रेट पे हमें आता है ताकि हम जनता का फायदा कर सकें और उसको वो रेट पे दे सकें। उसमें कोई भी प्रमोशनल एक्सपेंसेस नहीं जुड़े होते, मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ।
0: इस वजह से उस दवाई की जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो दवाई बेची जाती है, इसी वजह से उस दवाई की कीमत कम होती है।
1: एक्सैक्ट
0: जी।
1: अब जैसे ये टी शर्ट मैंने पहन रखा हुआ है
0: जी,
1: तो ऑब्वियसली 1500 या 1600 की होगी
0: जी।
1: अगर कि ये टी शर्ट जहां से बन रही है, अगर मैं वहीं से अपने ब्रांड की टी शर्ट या बिना ब्रांड की टी शर्ट लूं तो यही कॉस्टिंग मेरे को 150 रुपए की पड़ जाएगी
0: जी।
1: ये दैट इज अ ब्रांडिंग।
0: तो ये एक बहुत बड़ी है श्रोताओं, आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके अंतर्गत जो दवाएं बेची जाती है, अंकुर जी के माध्यम से हम ये समझ पाए कि उन दवाइयों में कोई अंतर नहीं होता है, जब वो विक्रेता तक पहुंचती है तो ही उनमें दवाइयों की कीमत में अंतर होता है। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे ख्याल आया कि जन औषधि केंद्र खोला जाए और लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए?
1: देखिए सर, मैं खुद भी हिस्सा रहा हूं 20 साल से फार्मास्यूटिकल का, एक बड़ी कंपनी के अंदर मैं भी एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर चुका हूं
0: जी,
1: और 2 साल मैंने एज अ एरिया मैनेजर काम किया उसमें
0: जी।
1: तो मैंने सर अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि कई लोग जो हैं वो दवाइयाँ कम पैसे होने के कारण वो दवाइयाँ वो नहीं खरीद पा रहे थे। तो मैंने तब मेरे मन में ये चीज आया कि आम जनता तो फिर भी वंचित रह ही रही है मेडिसिन से
0: जी जी।
1: तो मेरी और मेरी वाइफ ने और मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा माध्यम सर्च करूंगा
0: जी,
1: जिसके माध्यम से मैं सस्ती दवाइयां लोगों तक पहुंचाऊं। और मुझे फिर ये भारत सरकार की योजना मिली
0: जी,
1: तो मैंने अप्लाई किया और मुझे अप्रूवल वहां से आ गया, तो मैंने शुरू किया।
0: तो आप जब ये दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो क्या दिल में एक खुशी, एक तसल्ली होती है कि आप लोगों के काम आ रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, संतुष्टि होती है कि जब लोग हैरान होते हैं कि इतने की है, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोगों को आदत थी इतनी महंगी दवाइयां खरीदने की, अब लोग जब आते हैं, जुड़ते हैं तो बड़े खुश हो गए जाते हैं कि सर वाकई मतलब जो मेरी इतनी की मेडिसिन आती थी अब आप सिर्फ 50-90% का डिस्काउंट देके तो मतलब वो इजीली वो अफोर्ड कर पाते हैं मेडिसिन।
0: असल में ये डिस्काउंट जो आप देते हैं ये बेसिकली जो भारत सरकार की ओर से आप तक दवाइयां पहुंचती है तो वो उसी कीमत पे पहुंचती है जिस कीमत पर आप उसको सेल करते हैं।
1: बिल्कुल
0: जी। देखिए हमारे समाज में हर कोई व्यक्ति अपना जब योगदान देता है तो हम अपने समाज को आगे बढ़ा देते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि हम एक दूसरे का साथी बने, एक दूसरे का सहारा बने। तो इस तरीके से जो भारत सरकार की ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा भी मकसद ये है कि हमारे श्रोता इसके बारे में सुने और वो पता करें नेट से उनके आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत कौन सी दुकान है जहां से वो ये जेनरिक दवाइयां ले सकते हैं। और आज इंटरनेट का जमाना है, सारी जानकारी आपके हाथों में है। आप देखिए जो आसपास के आपके एरिया में शॉप है आप जरूर जाएं, इसके बारे में जानकारी लें। मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं, जब हम मार्केट से दवाएं लेते थे और उसके बाद जब ये योजना आई और हमारे घर दयालबाग में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का एक शॉप खुल गई और उसके बाद जब हमने उसके बारे में जाना तो आज हम भी वहीं से जेनरिक दवाइयां लेते हैं। और मुझे नहीं लग रहा कि जो ब्रांडेड दवाइयां हैं और जेनरिक दवाइयों में कोई अंतर हमें दिखता है। अंकुर जी एक और ब्रेक लेने का समय है, हम चाहते हैं कि एक और गाना आप बताएं और जो हम श्रोताओं को सुनाएं, आपका जो मनपसंद गीत हो।
1: एक वो सॉन्ग था कैसा ये इश्क है
0: जी,
1: अजब सा इश्क है।
0: आइए सुनाते हैं हम आपको अंकुर जी का ये मनपसंद गीत।

0: बहुत ही उमदा गीत आप लोगों ने सुना जो अंकुर जी की पसंद का था। और अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में है। अंकुर जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो जन औषधि केंद्र आप चलाते हैं, क्या आपके पास हर किस्म की दवाई वहां पर उपलब्ध है?
1: सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने
0: जी,
1: क्योंकि लोगों को अभी इतना पता ही नहीं है कि जन औषधि पे कौन कौन से मेडिसिन अवेलेबल हैं।
0: जी,
1: जन औषधि में सर ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन ही अवेलेबल हैं, जैसे कि डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन यानी बीपी, थायराइड, हार्ट की मेडिसिन जितनी भी आती हैं, फिट्स की मेडिसिन हो गई, और जितनी भी जनरल मेडिसिन हैं, वो सारी जन औषधि केंद्र पे आपको उपलब्ध हैं, हमारी जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हर महीने नई नई मेडिसिन लॉन्च कर रही है, अपनी वैरायटी को बढ़ा रही है। 2015 में जब ये योजना आई थी तो तकरीबन 900 से 1200 के बीच में जो मेडिसिन थी, आज वो मेडिसिन बढ़ के लगभग 3000 प्लस मेडिसिन हो गई।
0: यानी कि भारत सरकार भी इसका विस्तार कर रही है,
1: बिल्कुल,
0: ताकि हर कोई दवाई आपके जो केंद्र है उस पर मिले।
1: भारत सरकार ने लोगों की भलाई के लिए ये काम किया, लेकिन जब लोगों ने भी इस चीज को समझा और लोग जुड़े, तो सरकार का भी एक फर्ज बनता है कि वो उसको बढ़ाए और एक ही इंसान को सारी मेडिसिन केंद्र पर मिले।
0: तो लोगों का रुझान इस केंद्र पर आने का दिन ब दिन बढ़ रहा है,
1: लोग अवेयर हो रहे हैं सर, जैसे कि आपके माध्यम से भी अवेयर, जैसे आपने प्रोग्राम चलाया, तो ऐसे सरकार भी काफी काफी जगह पे कैंप्स लगाती हैं इसके लोगों को जागरूक करने के लिए, और लोग हमारे केंद्र पे आते हैं तो हम भी जागरूक करते हैं, तो ऐसे ऐसे जो हमारे पास जो है लोग जुड़ते जा रहे हैं।
0: जो आप केंद्र चलाते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके केंद्र पे लोगों को आना होगा, उनको कहां पर आपके जन औषधि केंद्र पे आना पड़ेगा?
1: सर, मेरे दो केंद्र हैं, एक तो अंबाला कैंट खोजकीपुर रोड पे है।
0: जी जी,
1: जो दयालबाग रहते हैं वो तो खैर समझ जाएंगे।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अंकुर जी आज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि जो हमारे श्रोता है उनको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, और अगर आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आज के डेट में इंटरनेट पर सारी जानकारियां उपलब्ध है। मकसद केवल और केवल यही है कि आम जन के लिए जेनरिक दवाइयां सस्ती दामों पे मिले और उनकी जो गुणवत्ता है, जैसे अंकुर जी ने कहा, भारत सरकार अपने देखरेख में तैयार कराती है और लोगों को उपलब्ध कराती है। और अब इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई और मनपसंद गीत हो जिस गीत के साथ हम लोगों को छोड़ के इजाजत लेंगे।
1: सर, मेरे मनपसंद गीत हो गए। अच्छा। अब मुझे आप अपना मनपसंद गीत बताइए।
0: ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कोई आमंत्रित मेहमान हमारे मनपसंद का गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज टीम रेडियो विदस्ता की ओर से हम आपको एक गीत सुनाते हैं। गीत के बोल हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, और इस गीत के साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं। अंकुर जी, आपसे आखिर में भी ये जानना चाहूंगा कि आप अंबाला छावनी से प्रसारित होने वाला FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आज पहली बार आए हैं, आपको यहाँ आके कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं?
1: सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और रियली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, और मैं आया भी पहली बार ही, और मुझे बहुत ही एक्चुअली अच्छा लगा ये यहाँ आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। जय हिंद, जय भारत।
0: और आप हमें दीजिए इजाजत, और किसी और कार्यक्रम में आपके साथ फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा एपिसोड 9। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्री अंकुर अरोरा जी, इनसे बात की भारत सपोरी ने। विषय था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, सहयोग राहुल अलियान का, रिकॉर्ड निर्देशन व प्रस्तुत किया भारत सपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा।

जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया। मारूं के छोड़ूं, तेरी टांगे तोड़ूं, बता तेरी मर्जी है क्या।

मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। मुजरिम तेरा नाम है, तुझ पे ये इल्जाम है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है। ये खता है तेरी, ये सजा है तेरी, तू आगे भागे तो मैं पीछे दौड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या। जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं के छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी।

लातों के जो भूत होते हैं बातों से को मानते वो नहीं, कुछ जानते वो नहीं, पहचानते वो नहीं। लातों के जो भूत होते हैं बातों से को मानते वो नहीं। आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी, आ मैं जरा तेरी बाहें मरोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या, बोल जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया, मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या।

तेरी मर्जी है क्या? कौन ऐसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या? बोल, जैसे को तैसा मिला, कैसा मजा आया? मारूं कि छोड़ू, तेरी टांगे तोड़ू, बता तेरी मर्जी है क्या?

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज आपके लिए लाया हूं एक सकारात्मक कहानी। एक बार एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा ये जानना चाहता था कि उसका कौन सा पुत्र अधिक बुद्धिमान है, मुश्किल हालातों में कौन सबसे अधिक सकारात्मक सोच अपनाता है। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक सिक्का देकर कहा कि इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे तुम्हारे कक्ष का कोना कोना भर जाए। रात को मैं तुम तीनों के कमरों का निरीक्षण करूंगा। बड़े राजकुमार को लगता था कि 1 रुपए से ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, इसलिए वो कुछ भी खरीद नहीं पाया। दूसरे राजकुमार ने थोड़ी बुद्धि लगाई और बाजार से भंगार खरीदकर अपने कमरे के चारों कोनों में फैला दिया। सबसे छोटा राजकुमार सकारात्मक सोच वाला था। वो सोचने लगा कि मेरे पिता एक इतने बड़े राज्य के राजा हैं, अगर उन्होंने एक सिक्का दिया है ऐसी चीज खरीदने को जिससे कमरे का कोना कोना भर जाए, तो जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा वास्तविकता में होगा। अपने पिता की बात को ध्यान से समझकर वो बाजार से दिए खरीद कर लाया। उसने कमरे के सभी कोनों पर रखे थे जिससे उसके कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर गया। राजा ने रात्रि को तीनों पुत्रों के कक्षों का निरीक्षण किया। राजा ने तीनों पुत्रों को पास बुलाया। राजा ने कहा कि जब मैंने सिक्का खर्च करने को कहा था तो मैंने उससे क्या खरीद सकते हैं उसका संकेत भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं रात्रि में तुम्हारे कक्ष में आऊंगा, तुम्हारे कक्ष का कोना कोना बड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि तुम दोनों की सोच नकारात्मक थी कि इससे ऐसा कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे छोटे भाई की सोच सकारात्मक थी, उसने समाधान पर ध्यान दिया, उसने बाजार से दिए खरीदे और अपने कक्ष का कोना कोना रोशनी से भर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम नकारात्मक सोच रहे होते हैं तो हम समस्या के आने पर समस्या को इतनी बड़ी मान लेते हैं कि समाधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यह थी आज की कहानी और उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। आप अपना फीडबैक जरूर हमें दें और अगर आप भी कहानियां लिखते हैं तो आप अपनी मौलिक कहानियां हमें भेजें। अगर उस कहानी को हमने सही पाया तो हम उसको आवाज देके लोगों तक पहुंचाएंगे। आप अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiovitasta@gmail.com या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

काश तुम होते हमारे इन बहती हवाओं के संग तैरते, हम दोनों पानियों में पत्थर फेंकते, इस पानी को मैं तुम्हारी हथेली में रख कर ताकि अपना अक्स ढूंढ सकूं और माजी के दर्द को चंद पलों के लिए भुलाने की कोशिश करूं। काश तुम हमारी परछाई बन पाते, मैं पकड़ता और तुम भागते और मैं पकड़ने की कोशिश करता। काश तुम बादल बनते, बरसते और मैं भीग जाता। तुम आकाश के किसी कोने से मुस्कुराते और मुझे इन हवाओं के हवाले करते।

0: और रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे
1: चंद अल्फाज इन सांसों को ताजगी बख्श दे। तुम्हारी सुरीली आवाज रूह से बात करती, यकायक जिस्म पिघलते। और जन्म होता फिर से हमारा तुम्हारा इस वादी गुलपोश में। यहां दर्द के इन नखमों को हम अलविदा कहते, नई सुबह के साथ ही इन साजों पे छेड़ते मखमली धुने। तुम्हारी आवाज से आवाज मिलाते, शायद एक गीत को हम दोनों जन्म दे पाते, एक नई अदाओ अंदाज के साथ।

खामोशी का एहसास अगर है तो बदलाव लाजमी ही है। अगर वक्त के साथ साथ हम चलें तो जाहिर है ये आकाश भी हमारी रहनुमाई करेगा। जमीन के हर जुज में तड़प है, कसक है और बेचैनी तारी रहती है। हम जी या मरे, जमीन और आसमान को इससे क्या लेना? सिर्फ यहां की धाराओं में बहना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, यहां कुछ भी हमारा नहीं। खाली आए और खाली जाएंगे, शायद कुदरत का यही दस्तूर है।

यहां आज इन प्यार की बरसातों में कोई तो आए पास बैठे, शायद फिर से ये मन बहल जाए। पिछली रात के पिछले पहर में जब ख्वाब में तुम भीगते हुए आए, रुक गई बारिश, घने बादलों में जैसे चांद दुल्हे का लिबास पहने सितारों की बारात लेकर तुम्हारी चौखट पर दस्तक दे रहा हो, जैसे कह रहा हो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, अपनी पनाहों में संभाल के रखेंगे। तेरा शुक्रिया, आते तो हो ख्वाब में ही

कभी कभी अनजाने हादिसात यूं घेर लेते हैं कि अपने आप को अलग करना नामुमकिन सा लगता है। अचानक कोई आकर दस्तक देकर चला जाता है, जज्बात को ठेस पहुंचाकर। उनके दामन में पनाह लेने की ख्वाहिश, दूर तक साथ साथ चलने की उम्मीद तो जग जाती है, पर पल भर में मिट जाती है यूं ही बेवजह। और हां, बस यही मान के चलना पड़ता है कि सपने कभी सच नहीं होते हैं। सपने तो सपने होते हैं,

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 4। प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट व निर्देशन भारत सपोरी।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज हमारे फौजी भाइयों के लिए एक विशेष कार्यक्रम हम पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं फौजी भाइयों आपको रेडियो विदस्ता की पूरी टीम की तरफ से और अपनी यानी आपके रेडियो सफर नरेश शर्मा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ही की बदौलत हम रातों को आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। सरहदों पर तो गोलियां चल रही हैं, कहीं कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हमारे यहां पर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन आप पूरी मुस्तैदी से हमारे लिए डटे हुए हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। सच कहूं, आप ही हिंदुस्तान हैं और आप ही हमारी शान है। तो हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम थोड़ी देर के लिए आपका मनोरंजन उन गीतों से करें जो बार बार आपको आपकी पुरानी यादें याद दिलाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस विशेष कार्यक्रम से, जो विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, क्योंकि सलीके से हवाओं में भी खुशबू घोल देते हैं, सलीके से भी हवाओं में खुशबू घोल देते हैं कुछ लोग, दिल की बात सिर्फ आंखों से ही बोल देते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म भरोसा का ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं राजेंद्र किशन ने, संगीत तैयार किया है रवि ने, और अपने शब्दों से अपने बोलों से इसको खूबसूरती दी है लता मंगेशकर ने। पेश है आपकी पसंद का ये पहला नगमा।

शरीर कहीं होता है और दिल कहीं और होता है, और जिसकी याद में हर वक्त की दिल तड़पता रहता है ना, उसको शायद एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो नज़रों में दिखाई नहीं देता ना, नज़रों से दूर होता है। कहते हैं कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, क्यों तलाश रही हैं तेरी बेताब निगाहें, हमको खुद में झांक तेरी आंखों में ही दिखाई देंगे, खुद में झांक तेरी आंखों में ही दिखाई देंगे। तो अब आपके लिए पेश है इज्जत फिल्म से ये गीत, जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से संवारा है, और इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, और अपनी खूबसूरत आवाज से आपके दिल तक उतरने की कोशिश की है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने।

FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता और मैं नरेश शर्मा आपका रेडियो हम सफर आपको सुना रहा हूं, आपका पसंदीदा प्रोग्राम और वो भी आप ही के लिए, फौजी भाइयों के लिए। आइए अगली पेशकश लेकर आपके लिए आता हूं। और पहली बात तो सारी जो चल रही ना बातें दिल की हो रही थी, आंखें कहीं दूर चली गई थी, अब हम दिल के साथ साथ आंखों की बातें भी कहते हैं, क्योंकि आंखें ना होती ना तो जहान ना दिखता, और जब ये जहान ना दिखता तो कुछ भी मन में नहीं आता, इसलिए हम आंखों को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना दिल। इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है, जब चोट दिल पे आती है ना तो उसका असर आंखों से ही दिखाई देता है। इसीलिए कहता हूं कि अश्क आंखों में उठाते हुए थक जाता हूं, बोझ पानी का उठाते हुए थक जाता हूं, पांव रखते हैं जो मेरे जज्बातों पर, वो क्या जाने मैं निशानात मिटाते हुए थक जाता हूं।

तो ये गीत आप सुन रहे थे ना, ये गीत था फिल्म बॉबी का, और इस गीत को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से संवारा था और इसके खूबसूरत बोल आपके सामने पेश किए थे आनंद बख्शी ने। वैसे फौजी भाइयों, आपको एक बात बताऊं, ये जो प्रोग्राम में जो गीत हम आपके लिए लेकर आते हैं ना, ये हमारी कोशिश होती है कि ये वो गीत हों जो आपके दिल को छू जाएं और आप इनको बार बार गुनगुनाएं भी। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में कुछ और सुनने की इच्छा है, निसंकोच रेडियो वितस्ता को अपना हम सफर ही समझिए और हमें हमारे दूरभाष नंबर 7056413010 पर अपनी फरमाइश बताइए। हम अपने अगले एपिसोड में आपके पसंदीदा गीत जरूर सुनवाएंगे। अब हम इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं कि दिल में मतलब और जुबां से प्यार न कर, दिल में मतलब और जुबां से प्यार न कर, मेरे महबूब मोहब्बत में ऐसा कारोबार न कर। आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आंखें से और इस गीत के संगीतकार हैं रवि। साहिर लुधियानवी के खूबसूरत शब्दों को लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज के साथ में पेश कर रहे हैं। इनके शब्द हैं, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुर्म न कर।

आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए। जिस तरह से ना आदत पड़ जाती है शरीर को खाने की, भूख की, उसी तरह से फौजी भाइयों हमारे को भी आपकी आदत पड़ गई है। हम आपके बिना अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि फौजी भाइयों के बिना भी कोई जिंदगी हो सकती है। हम आपके एहसानमंद हैं क्योंकि आपने जो हमारे प्रति अपना फर्ज अदा किया है और कर रहे हैं ना, ये किसी मतलब से नहीं कर रहे हैं। आपने तो अपने आप को इस देश के नाम कर दिया है। अपनी सारी खुशियां, सारी इच्छाएं आपने न्यौछावर कर दी हैं। आप वो नहीं हैं जो कहते हैं कि नाम की दोस्ती और काम की यारी दूसरों की तरह, ये आदत नहीं है हमारी। हम जानते हैं आप तो बिना किसी मतलब के सिर्फ एक ही ध्येय लेकर चल रहे हैं कि भारत हमारी माता है, हम इसकी संतान हैं, और चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि किसी की जरूरत नहीं है जो हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख ले। इसलिए हम आपके सहारे चल रहे हैं। सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि ये जो गीत हम आपको पेश कर रहे हैं ना, एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि है, हमारा समर्पण है। ये गीत जो हमने इस विशेष कार्यक्रम में फिल्म सफर से लिया है, इस गीत को लता मंगेशकर ने गाया है और कल्याण जी, आनंद जी ने संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, कुछ मतलब से लोग हर काम हर एक्शन करते हैं। एक आप ही तो हैं जो बिना मतलब हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बस इतना सा रास्ता आप हमारे साथ में बनाए रखें, इतनी सी सिलसिला हमारा और आपका चलता रहे कि आप हमें बताते रहें और हम आपको सुनाते रहें। कहते नहीं है कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाते रहूं। तो आप तो अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जितने कोई अपनी महबूबा से भी नहीं करता, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के आप अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, इसी तरह के ये गीत जो आपके पसंद हैं मैं आपको सुनाता रहूं और आप सुनते रहें। बस हमें अपनी फरमाइशें बताते रहिए। जल्द ही दोबारा फिर आपके साथ में मिलूंगा। इस गाने के साथ मैं आपको छोड़ चलता हूं। वादा तो कीजिए कि अगली बार आप अपनी फरमाइश से इस प्रोग्राम को चलवाएंगे, हमें बताकर कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं, और एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए इस गीत का जिसको फिल्म महबूब की मेहंदी से हमने लिया है। आनंद बख्शी के बोलों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से सजाकर लता मंगेशकर की खूबसूरत मधुर आवाज में पिरो के रखा है। जाते जाते फिर आपसे कहता जाता हूँ कि लोग मकसद से करते होंगे, हम और आप तो बिना मतलब ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, फिर भी कहते हैं कि फिर मिलूंगा अगले प्रोग्राम के लिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपके लिए कराऊंगा आपके पसंद के कुछ गीत, कुछ नगमे, कुछ बातें, कुछ मुलाकातें, कुछ दिल की, कुछ बाहर की, कुछ खट्टी और कुछ मीठी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रेडियो हम सफर नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 4, प्रस्तुत किया नरेश शर्मा ने, रिकॉर्ड किया राहुल अलियान, सहयोग निया जैन का, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.3

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुफ्तगू। और आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे नरेश शर्मा, और आज के मेहमान है रंगकर्मी हरियाणवी कलाकार शिव किरमच।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, एहसास अपनेपन का, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणवी कला मंच के एक मंझे हुए कलाकार श्री शिव किरमच जी। शिव किरमच जी उभरते हुए विख्यात गायक सिद्धू किरमच के पिता हैं, जिनकी एक एल्बम अभी कुछ दिन पहले आप सुन रहे थे नैना नाम से। ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, और इन्हीं सिद्धू किरमच जी के पिता शिव किरमच, ये स्वयं भी एक कलाकार हैं, या यूँ कहा जाए कि कलाकारों का परिवार है। ये आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो के बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो शिव जी, रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: और हम सबकी खुशकिस्मती है कि हरियाणी रंगमंच को एक अलग पहचान देने वाले, जिन्होंने अपनी कला से हरियाणी रंगमंच पर एक अलग छाप छोड़ी है, वो कलाकार आज हमारे बीच में मौजूद है, जिनका शिव किरमच मैंने आपको नाम बताया। आइए जानते हैं इनकी जीवन के कुछ पहलू और इनके दिल की बात हम आज इन्हीं से जानेंगे। तो देखते हैं कि क्या है शिव किरमच जी की कहानी, सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। तो शिव जी, आप ये बताइए कि कला के क्षेत्र में आपका रुझान किन किन कलाओं में है?
2: जी मैं बताऊं, कला में रुझान मेरा बचपन से ही था, लेकिन मेरा शरीर दुबला पतला, कद मेरा छोटा, और मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। लेकिन जैसे जैसे मैं महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ओर गया, मेरा ये रुझान उभरने लगा, निखरने लगा, और मैं कोशिश करने लगा।
1: मैं दोस्तों आपको ये बता दूं, जो दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि शिव किरमच जी अध्यापन कार्य से संबंधित रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं, और सेवानिवृत्त होने के पश्चात में अब ये अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने जा रहे हैं कला क्षेत्र के बीच में। जैसा कि इन्होंने बताया कि कद काठी छोटी होने की वजह से ये मतलब एकदम से समर्पित तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगा, जितना हमने इनको जाना और पहचाना है, आप इनके बारे में इतना जरूर कह सकते हैं कि ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाल। और देखते हैं कहां कहां इन्होंने बड़े धमाल मचाए हैं, और भविष्य में कला के प्रति इनकी क्या क्या और योजनाएं हैं।
2: जी मैं बताऊं सर आपको, मैं झिझकता था मंच पे जाते हुए भी। जैसे मैंने पहले MA किया, उसके बाद मैंने BEd किया। BEd में मुझे थोड़ा थोड़ा सा अंदर मन में रहता था कि कुछ मैं मंच पे बोलूं, और मैं फिर कोशिश करने लगा, कभी चुटकुले सुना दिए, कभी कोई तुकबंदी सुना दी, और धीरे धीरे ये बात गंभीर रूप लेने लगी। और संयोग ही कहूँ, जैसे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था करनाल में, तो बहुत सी फिल्में देखता था, फिल्में देखकर एक एक्टिंग का जुनून सवार होता था, मैं कैसे करूं, लेकिन मैं कर तो पता नहीं था, लेकिन मैं करने की कोशिश करता था। संयोग से 2009 में कुरुक्षेत्र में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर नाम की एक संस्था खुली,

0: और वहां मुझे एक छोटा सा करेक्टर करने का मौका मिला। नाटक था जिस लाहौर ने देखा और जम्याई ने। कुछ लोगों ने पसंद किया, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, और धीरे धीरे मैं 2009 से और आज तक कंटिन्यू नाटकों में काम कर रहा हूँ, चाहे वो सैया भाई कोतवाल हो या जिस लाहौर ने देखा या खबरदार, यानी कि बहुत से नाटक। और इससे मेरा व्यक्तित्व तो भी निखरने लगा। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, पहचानते थे, वो मुझे जानने लगे, पहचानने लगे।
1: वाह जी, तो ये तो इनकी कला का एक पहलू रहा है जो ये बता रहे हैं, एक्टिंग जी। एक्टिंग के विषय में इसके साथ साथ में संगीत में भी आपकी रुचि रही है क्या?
0: संगीत मैं गा नहीं सकता, लेकिन मैंने कुछ गीत लिखे हैं, हरियाणवी में भी लिखे, हिंदी में भी लिखे, तो ये रुचि भी तुकबंदी करने की। जैसे मैं बीए फाइनल में हुआ, फिर एमए में हुआ, तब मेरे अंदर था ये भी कि मैं कुछ कविताएं लिखूं। और आज आप सबके स्नेह से मेरा एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें 50 कविताएं शामिल हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि जो जो बातें मैंने आज से 40 साल पहले सोची थी, मेरा काव्य संग्रह हो, मैं नाटकों में काम करूं, मैं फिल्मों में काम करूं, ये सब मेरे सपने धीरे धीरे प्रभु की कृपा से पूरे होते चले गए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आपका अभी नाटक संग्रह प्रकाशित हुआ है, क्या आप हमारे श्रोताओं को अपने किसी कविता की चंद लाइनें सुनाना पसंद करेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा, और ये मुझे पसंद भी है और मुंह जबानी मेरे याद भी है। जब मैं 92 में बीएड का विद्यार्थी था, तब मैंने ये तुकबंदी की थी, वही कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ।
1: जी जी।
0: शीर्षक है संभलो संभलो, संभलो संभलो मेरे अजीज युवाओ, क्यों पांव कुल्हाड़ी मार रहे, पढ़कर बुरे व्यसनों में क्यों जीवन भाग उजाड़ रहे। आज पढ़ते ही नजर कुछ युवाओं पे मेरा मस्तक झुक जाता है, देख इनके दुष्कर्म दिल भी दहल जाता है। नैतिक पतन तो कर चुके, क्यों शारीरिक पतन भी करते हो, पीकर मदिरा लेकर ड्रग्स क्यों जीवन कलंकित करते हो, चरित्र का तो मैं नाम नहीं, क्यों सभ्यता को भी छोड़ दिया, माता पिता व गुरुजनों से तुमने क्यों नाता तोड़ लिया। कहता है शिव संभल जाओ, कहता है शिव संभल जाओ, वरना फिर पछताओगे, दो दिन की मौज है प्यारे, हरदम रोते पाओगे, हरदम रोते।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
0: धन्यवाद।
1: तो ये जो श्रोताओं, आप कलम का जौहर आपकी नजर के बीच में आया, शिव किरमिश जी का, समझते हैं आपके कलाकार अपने मन की भावनाओं को अपनी कलम के मार्फत हम सबके बीच में रखते हैं। और इन्होंने भी तो बहुत बात अच्छी बात कही है कि ये जो आजकल एक चलन सा चल पड़ा है नशों का, नशों के विरुद्ध आगाह किया है, बहुत सुंदर रूप से अपने संदेश को देने की इन्होंने कोशिश की है। समय रेडियो के ऊपर अक्सर कम होता है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय के बीच में इनके विषय में ज्यादा से ज्यादा जितना जान पाए उस जानकारी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। तो एक पहलू और भी जिंदगी का होता है
0: जी।
1: वो होता है कि एक तो आपने बताया जिस तरह से कि अभी ड्रग्स की बात
0: जी,
1: यानी जिसको हम नशे के ऊपर कह सकते हैं
0: जी,
1: एक है प्यार मोहब्बत की बात
0: जी।
1: तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ में क्या कोई ऐसी अनहोनी हुई?
0: अनहोनी की बताऊं, ये मन में ख्यालात तो सबके ही आते हैं। जब मैं जैसे 11वीं 12वीं का विद्यार्थी रहा, 13वीं 14वीं का विद्यार्थी रहा, मन में एक ऐसी इच्छा तो होती है इस तरह की एक कहानी बने। और कविताएं तभी लिखी जाती हैं, तभी मन के भाव भी व्यक्त हो पाते हैं। तो लेकिन मैं शक्ल सूरत का तो इतना सुंदर सा था नहीं, ऐसा ही था, काम चलाऊ सा था, तो फिर ये बस ख्यालों में ही ये पुलाव पकती रही। और हो सकता है जिंदगी में थोड़ा बहुत हुआ भी हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
1: नहीं, आप इसको स्पष्ट रूप में बताइए ना कि आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ, हो सकता है नहीं, जब आपके साथ में हुआ तब आप ये नहीं कह सकते कि हो सकता है, तब आप ये कहिए कि हाँ जिंदगी के बीच में मेरे साथ में
0: हाँ,
1: प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला,
0: हाँ,
1: कुछ सीढ़ियां आपने चढ़ी,
0: हाँ, चढ़ी हूँ, ये पढ़ते टाइम जरूर ऐसी।
1: क्या आज भी दिल धड़कता है?
0: हाँ, कल्पना में तो 100% धड़कता है, और तभी मैं ये जैसे गीत लिखता हूँ तो कल्पना भी तभी अच्छी कर पाता हूँ जब वो ख्याल आते हैं, इस तरह के कुछ जो अनुभव रहे हैं उन्हीं के आधार पे फिर कुछ पंक्तियाँ गढ़ ही जाती हैं।
1: श्रोताओं, मेरी शुभकामनाएं शिव किरमिट जी के साथ में हैं, क्योंकि जो बातें अभी आप किरमिट जी के मुखारविंद से सुन रहे थे कि अभी भी इनका दिल किसी और के लिए धड़कता है, मैं समझता हूँ कि ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार सिर्फ आप लोग ही नहीं सुन रहे, शिव किरमिट जी के परिवार वाले भी सुन रहे हैं, और इसीलिए मैंने पहले वो कह दिया कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। सर, हम चलते हैं एक दूसरा रुख आपके जीवन का, जो दूसरा पहलू है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं।
0: जी।
1: सुना है आप एक बहुत बहुरंगी बहुमुखी थिएटर के कलाकार भी हैं, क्या ये सच है?
0: जी, ये भी संयोग ही कहूँ सर। 2009 में जैसे वहाँ हरियाणा कला परिषद का एक कार्यालय या एक यूं कहूँ एक थिएटर का एक ऑफिस वहाँ खुला, तो किसी ने, एक डायरेक्टर थे वीरेंद्र जी, तो वो कुछ चयन कर रहे थे, ये इसकी नायिका रहेगी, ये नायक रहेगा, और मैं वैसे ही दर्शकों में बैठा था, तो मेरी शक्ल सूरत देख के उन्होंने अंदाजा लगाया, अलीमुद्दीन एक चाय वाले का करेक्टर था, पूछने लगे भाई शिव भाई तू कर लेगा? अब मेरे मन में तो अंदर तड़प थी कि कुछ नया करूं, और मैंने कह दिया हाँ, वो तो मेरे मुझसे रहा नहीं था, लेकिन मैंने हाँ कर दी। फिर उन्होंने 5-6 महीने रिहर्सल करवाई, कहने लगे भाई शिव कुमार आपके बस की बात नहीं है, ये आप चले जाओ, आप तो शर्माते, वो तो यहाँ तो लड़कियों से मिलना भी पड़ेगा, गले भी लगना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये तो मुश्किल काम है, मैं वैसे भी अध्यापक हूँ और मुझे थोड़ा बुरा सा लगेगा, लोग भी क्या कहेंगे, लेकिन मेरे अंदर था। फिर मैंने कहा नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा, और सीखते सीखते वो पहला ही नाटक जिस लाहौर नहीं वेख्या, जमया ही नहीं, वो पूरे भारत में मंचित हुआ, और पूरा चाहे वो इलाहाबाद, उदयपुर, शिमला, चंडीगढ़, पटियाला और हरियाणा के शहर करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, और वो पूरा हिट होता चला गया, और मुझे भी फिर थोड़ा सा नाम, लोग कहने लगे भाई ये जचता है बंदा अलीमुद्दीन के किरदार में, और इस तरह मेरी जो भावनाएं हैं वो और उफनती गई, और मैं फिर अगले नाटक में, और आज कुरुक्षेत्र में मतलब मैं ये निसंकोच कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा नाटक मैंने किए हैं, अभिनय मैंने किया है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो एक नाटक जिसका शीर्षक था जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति ने लाहौर नहीं देखा उसका जन्म ही नहीं हुआ।
0: नहीं नहीं, सीखने का मतलब सर कि मैं अभिनय सीख जाऊंगा, और इनसे भी मैं थोड़ा खुल के बात करने लगूंगा। पहले 1 साल तो मैं बहुत कम ही करता था, फिर वो मैंने रिकॉर्ड भी सारे तोड़े, फिर मैं बातें भी खूब करने लगा।
1: देखिए, ये सिर्फ जो बातचीत मैं आपसे कर रहा था, ये अपने श्रोताओं को जो बात बता रहा था वो सिर्फ एक मनोरंजन मात्र के लिए थी, वरना शिव किरमिट जी एक बहुत मर्यादित और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे मन में इनके लिए विशेष बहुत ही बहुत सम्मान है। आप हमारे स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों के लिए इतनी बातें कह रहे हैं, हम देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रोग्राम जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का है वो जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि नाटक, आपने बताया कि नाटक जैसा कि जिस लाहौर में वेख्या वो जमया ही नहीं, आप ये बताइए कि नाटक ने आपके जीवन के बीच में क्या परिवर्तन ला के दिया है?
0: बहुत बड़ा परिवर्तन कहूंगा इन नाटकों से, क्योंकि मेरा जो व्यक्तित्व था वो ऐसा ही था, काम चलाओ, मुझे मतलब एक अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स रहता था, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, मेरी हिंदी ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगी, इन सब बातों का निवारण हुआ नाटक से। और अब मैं सच बताऊं, कहीं गाड़ी में डीजल भी डलवा रहा होता हूं, लोग मुझे जानते हैं, सर आप तो वो नहीं हो कल टीवी पे आ रहे थे, मैंने कहा हाँ, सर आपको तो मैंने अखबार में फोटो देखा था, आप सैया भाई कोतवाल में कोतवाल बने हुए थे, और इतना अच्छा लगता है। और स्कूल की मैं बताऊं, चाहे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी या और जितने भी अधिकारी, वो सब मुझे मतलब एक बड़े रूप में देखते थे, भाई ये अध्यापक प्राध्यापक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक रंगमंच का खिलाड़ी भी है, ये मंच संचालन भी क्योंकि मेरी झिझक वो सब टूट चुकी थी। इमरजेंसी में मैं मन संचालन भी करता, मैं कविताएं भी सुनाता, चुटकुले भी सुनाता, सब काम मैं करने लगा और मेरी वाहवाही होने लगी। चाहे वो जिला कुरुक्षेत्र हो या जिला जींद हो, हर जगह जाके नाटकों का खेलना, चुटकले। आपको बता दूं, एक बार कुरुक्षेत्र में ही पूरे हरियाणा के चुटकलों का एक कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, जिसमें ऊपर के 10 चुनने थे और आप सबके स्नेह से उन ऊपर के 10ों में मैं रहा। मुझे 5,000 रुपये का पुरस्कार और स्मृति चिन्ह वगैरह वो दिया गया और एक बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें फिर मैंने अपने जोक्स, अपने चुटकुले हरियाणवी में सुनाए।
1: वाह, हरियाणवी कला के, हरियाणवी संस्कृति के, हरियाणवी परंपरा के पारंगत कलाकार श्री शिव किरमिश जी बता रहे थे अपने जीवन की कुछ झलकियां। तो इसके साथ साथ हम जैसा कि जानते भी हैं कि इनके पुत्र सिद्धू किरमिश जी जो विख्यात गायक हैं और आगे भी अभी उनकी यही परियोजनाएं हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज रेडियो वितस्ता के माध्यम से
0: जी,
1: आप नवोदित कलाकारों को, चाहे वो गायक हों, चाहे वो संगीतकार हों, चाहे वो थिएटर के कलाकार हों, या जो भी कला क्षेत्र से संबंधित हों, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश दूंगा, जो उभरते कलाकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, वो संयम से और शिद्दत से काम करें और अपने आप को हवा में ना उड़ाएं कि 2 दिन काम किया और मैं तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनूंगा या मैं मुंबई फिल्मों में काम करने चला जाऊंगा। पहले उस बात को अच्छे से सीखें, अपने अनुभव एकत्रित करें और फिर कुछ आगे की सोचें। यूं नहीं भाई 5 दिन एक प्ले में, एक नाटक में काम किया, वो भी एक डंडा सा लेके खड़े हुए, और 7वें दिन कह रहे हैं मैं मुंबई का रुख कर रहा हूं, मैंने थिएटर तो बहुत कर लिया, या मैंने रियाज कभी किया नहीं, और गायकी में एक वैसे ही ये आजकल मशीनी युग है, वो अपनी ट्यूनिंग टैनिंग करके और अपना सुरताल सा थोड़ा ठीक कर लिया और कहने लगे हाँ मैं भी अच्छा गायक बन गया। इसके लिए जरूरी है रियाज करें, सीखें, अच्छे जो गायक हैं, जो भारत में इतने बड़े बड़े नाम रहे हैं, उनको सुने और फिर उनको अपने जीवन में उतारें और कोशिश, ईमानदारी बरतें, मेहनत करें, बिना मेहनत के फल मिलने वाला नहीं है। आज जो ये मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये इतनी जल्दी नहीं कि मैं कल रंगकर्मी बना और आज आपने मुझे रेडियो वितस्ता पे बुला लिया। इसके पीछे मेरे कम से कम 30 साल तो जरूर गए हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका और सभी सुनने वालों का कि मुझ जैसे छोटे से आदमी को आप सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: देखिए, अभी जो आपने संदेश उभरते हुए कलाकारों को दिया
0: जी,
1: कि जरा सी सफलता पाने पर हवा में ना उड़ने लग जाएं और अपने आप को मत भूलें, रियाज करें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और थोड़ी सफलताओं से बहुत ज्यादा बड़ी अभिमान में ना आए
0: जी।
1: आपकी एक बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि कहते हैं कि बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे
0: जी,
1: जो चंद सांसों में फूल जाते हैं।
0: वाह,
1: बड़े कमजर्फ हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं।
0: बहुत खूब।
1: तो मकसद ये है कहने का, आप कहीं पर भी रहिए, अपनी औकात को मत भूलिए, अपनी जमीन को मत भूलिए, अपने पांव को मत भूलिए, क्योंकि आखिर टिक कर तो जमीन पर ही रहना है। हमारे साथ आज शिव किरमिश जी जुड़े हैं और मैं इनसे, क्योंकि रेडियो के ऊपर हैं हम लोग, रेडियो वितस्ता पे इस प्रोग्राम से इनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, मैं ये चाहूँगा सर आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा पसंदीदा गीत आपका जो आपको दिल के बहुत करीब हो, यूँ कह लीजिए कि आपके दिल की आवाज़ हो, कोई ऐसा गीत हमें बताइए, गुनगुना के सुनाइए, फिर हम वो गीत दर्शकों को आपकी फरमाइश पर आपकी तरफ से पेश करेंगे।
0: जी, मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन रेडियो
1: आप कहकर सुना दीजिए।
0: हाँ, कहकर, मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है
1: जी,
0: और किशोर कुमार के गाने बहुत, रेडियो इतना सुना है मैंने बहुत ज्यादा, और जो जिंदगी से जुड़ा होता है, जैसे मैं कई बार अपने आप को जोड़ देता था गीतों के साथ इस तरह का, तो किशोर का वैसे तो आप कोई भी बजा दो, लेकिन मुझे तो जैसे मेरी जिंदगी पे जो फिट बैठता है मैं कई बार सुन लेता हूं, या तो मैं अपने दोस्त को दो गाने बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा वो उनमें से एक बजा देना सर। एक तो मेरी जिंदगी जैसे टूटी फूटी, भाई कुछ लोगों के पांव नहीं होते, ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, अवतार फिल्म का गाना है सर ये, मेरे जिंदगी के बहुत करीब है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुप्तगु और आज चर्चा हो रही है शिव किरमच जी से, जो हरियाणवी कलाकार और रंगकर्मी हैं।
1: से मेरे गांव में एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त, अब वो नहीं रहे दुनिया में, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे क्लास फेलो थे वो, लेकिन वो मुझे चाहते थे कि मैं कुछ सीखता रहूं, ऊपर उठता रहूं। वो अब नहीं है, उनके लिए तो मैं अक्सर यही याराना फिल्म का तेरे जैसा यार कहा।
2: तो श्रोताओं, हम जहां पर आज शिव किरमच जी ने हरियाणा की संस्कृति को इतना कुछ दिया है, हम आज रेडियो की दस्ता की तरफ से शिव किरमच जी के लिए समर्पित करते हैं किशोर कुमार जी के ये गीत, जो इनके पसंदीदा गीत हैं। और इन्हीं गीतों के साथ में मैं आपको छोड़े चलता हूँ रेडियो दस्ता के इस परिवार से, और साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ शिव किरमच जी का कि वो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से बातचीत की, कुछ अपने दिल की बातें कहीं, कुछ छुपा भी ली, जो हम मौका लगने के ऊपर फिर किसी और कार्यक्रम के बीच में इनसे ज़रूर सुनेंगे, कोशिश करेंगे इनके दिल तक दस्तक देने की, क्योंकि जब तक दिल तक दस्तक नहीं होती ना, तब तक बात पूरी निकल नहीं पाती। तो आज अब इस मोड़ के ऊपर इन गीतों के साथ ही अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा आपको किसी और प्रोग्राम के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का, धन्यवाद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुप्तगु। आज बात कर रहे थे नरेश शर्मा और आज के मेहमान थे शिव किरमच, जो रंगकर्मी है और हरियाणवी कलाकार है।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो, रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते। सुनते रहो अपने

तो बोजन एफएम नमत आचार्या सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Hello.
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज इस समय मैं लाइव हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर। आप सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज और कल FM 90.0 रेडियो विदस्ता अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रहा है। 31 और 1 सितंबर क्यों? रेडियो विदस्ता का जो इतिहास है वो केवल 3 साल का नहीं है बल्कि 8 साल का है। 5 साल पहले 31 अगस्त 2018 को रेडियो विदस्ता का जन्म हुआ था एक वेब रेडियो के नाम से और आप सभी से हम जुड़े थे एक वेब रेडियो के बेस पर और उसका प्रसारण हम इंटरनेट के थ्रू ही करते थे। 5 साल का सफर कब निकला हमें पता ही नहीं चला और उस 5 साल के सफर में बहुत सारे लोगों ने साथ दिया और उसमें कुछ लोग खास भी हैं और वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आज हम इसी सिलसिले में आपसे करेंगे बात और इस बात को हम कोशिश करेंगे कि दिल से आप तक इन बातों को पहुंचाएंगे और जो हमारे रेडियो विदस्ता के मेंटोर है हमारे गुरुजी हैं रमेश मराठा जी, उम्मीद करते हैं कि वो भी हमसे आज जुड़ पाएंगे इस कार्यक्रम में लाइव और वो इस समय हमें अगर जुड़ पाए तो वो हमारे साथ जम्मू से जुड़ पाएंगे। खैर जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तब हम उनसे बात करेंगे और आज के इस दिन को मैं शुरुआत करूंगा कुछ पंक्तियों के साथ। पंक्तियां यूं है, रेडियो विदस्ता की हर गूंज में नरेश शर्मा का नाम बसा है। एक बार फिर पढ़ता हूं, रेडियो विदस्ता की हर गूंज में नरेश शर्मा का नाम बसा है। अपनी सुरीली आवाज से उन्होंने हर एक दिल को छू लिया है। 8 वर्षों के लंबे सफर में हर कदम पर साथ निभाया, नए कलाकारों को ढालकर हर मोड पर हाथ थामा और राह दिखाया। रेडियो विदस्ता और नरेश शर्मा का यह नाता बेहद खास है। उनकी निष्ठा और समर्पण से सजता हर एक पल और एहसास है। जी हां श्रोताओं, नाम तो आपने सुनी लिया, मैं नरेश शर्मा जी की बात कर रहा हूं जो हमारे गुरु भी है, साथी भी है जब से रेडियो विदस्ता का आगाज हुआ था। आप सभी जानते हैं रेडियो विदस्ता को चलाती है वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला, जो पिछले एक दशक से ज्यादा अंबाला में थिएटर में कार्य करती है और वही संस्था इस रेडियो विदस्ता को भी चलाती है। मकसद हमारा यह है कि हम अंबाला को विश्व पटल पर रखें और अंबाला का नाम जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है ऐसे ही अंबाला भी आगे बढ़े। इन 2 दिनों में हम कोशिश करेंगे उन सभी लोगों से बात करें जिन्होंने मेरा हाथ थामा, रेडियो विदस्ता का हाथ थामा। जानते हैं वो आपके बारे में श्रोता होने के नाते, हमारे बारे में संचालक होने के नाते क्या सोचते हैं। तो आइए रूबरू करता हूं आप सभी को आज के हमारे आमंत्रित मेहमान को आज की तीसरी वर्षगांठ पे जो 31 अगस्त से शुरू होती है और 1 सितंबर को संपन्न होती है। तो हमारे साथ है नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपका स्वागत करते हुए आज स्टूडियो FM 90 में।
2: नमस्कार, धन्यवाद। आज स्टूडियो में मुझे बुलाया आपने, बहुत अच्छा लगा एक बार फिर से। तो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आइए कुछ बातें करते हैं अब तक के हमारे सफ़र के बारे में। क्या हमने हासिल किया, क्या हासिल करना है। सबसे पहले तो मैं रेडियो विदस्ता की इस तीसरी वर्षगांठ पर संचालक सुपोरी सर, किरणी मैडम, श्रोताओं के साथ साथ टीम विदस्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी इस लगन और इस मेहनत ने आज यहां तक का सफर तय किया है। लेकिन अभी सफर जारी है। आगे जैसे जैसे बातचीत होगी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन इस मौके के ऊपर मैं नहीं चाहता कि एक नाम को मैं भूलूं, और वो नाम है रमेश मराठा सर का, हमारे गुरु हैं। जब भी माइक के सामने आता हूं ना, तो अपने आप ही नतमस्तक हृदय हो जाता है। पहली बार जब सुना था तो लगा था हां यार कोई आवाज है जो मुंह से नहीं आती, दिल से आती है और दिल में ही उतर जाती है। उस आवाज ने ऐसा सम्मोहित किया कि आज भी उस आवाज के आगे नतमस्तक हूं और अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं रमेश मराठा सर का शिष्य हूं। बाकी ये कहने में चूकना नहीं चाहता हूं कि जो भी मान सम्मान या पहचान मुझे आज की तारीख में रेडियो जगत में प्राप्त हुई है, उस सब का श्रेय रेडियो वितस्ता को ही जाता है। एक नौसखिया जो कुछ भी तो नहीं जानता था और आज भी नहीं जानता, हां आवाज जब आप तक रेडियो वितस्ता के माध्यम से पहुंची ना, तो लोगों ने इसको सराहा। और जब शुरुआत की थी, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तब ये वेब रेडियो हुआ करता था और उसके बाद में सामुदायिक रेडियो बना। उस सफर के बीच में जहां जैसे जैसे रेडियो वितस्ता आगे बढ़ता गया, हमें भी एक नई पहचान, एक नई जानकारी देता गया। मैं धन्यवाद ही कर सकता हूं इस पहचान के लिए, सम्मान और पहचान के लिए जो रेडियो वितस्ता के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। सुपुरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझ जैसे नौसखिए को, फिर वो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, हाथ पकड़कर रेडियो वितस्ता जैसे महान मंच के साथ में, जो विथ थिएटर ग्रुप की एक अलग पहचान के साथ में आगे बढ़ाया और हमारे को अपने साथ में लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: नरेश शर्मा जी, आपके जो ये शब्द है, इन शब्दों से ही हमें हमेशा प्रेरणा मिली है। और इस सफर को जब हमने शुरू किया, हमने सिर्फ सुना था कि आप जब सफर की शुरुआत करते हैं तो कारवां बनता रहता है, पर मेरे कारवां में सबसे अगर मेरे साथी रहे हैं रेडियो वितस्ता के सफर में, वो है नरेश शर्मा जी। मैं तो नौसिखिया तो नहीं मानता हूं, और मैं तो ये मानता हूं कि हर पल हर साथ जो भी आप निस्वार्थ रूप से कर सकते थे, वो आपने तब भी किया, वो आप आज भी कर रहे हैं। हम गौरवान्वित है कि आज हमारी इस तीसरी वर्षगांठ में, जबकि इस रेडियो के 8 साल आज पूर्ण हो गए, इन 8 सालों में हर दम हर समय आप हमारे साथ रहे हैं, इसके लिए तो हम आभारी रहेंगे हमेशा। और मैं शर्मा जी आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे गुरुजी का भी कॉल आ रहा है, देखते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। और जब तक हम उनसे कनेक्ट करते हैं, जी हाँ नमस्कार रमेश मराल जी, स्वागत आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर,
1: आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आज आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, रेडियो वितस्ता की तीसरी वर्षगांठ आज शुरू हुई है, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलती है, क्योंकि वेब रेडियो की शुरुआत 31 अगस्त 2018 को हुई थी और हमारे सामुदायिक रेडियो की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी। तो इसलिए हमारे लिए ये दोनों ही दिन महान है, और इन दोनों दिनों को महान आपने बनाया है। इस समय हम एक लाइव शो कर रहे हैं और मेरे साथ इस समय नरेश शर्मा जी हैं, और वो भी आपसे कहना चाहते हैं।
2: गुरुदेव प्रणाम।
1: वो आपको प्रणाम जी, आपको आवाज आ रही है उनके?
0: जी बिल्कुल आ रही है, बहुत बहुत।
2: तो मैंने कहा
0: हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी।
2: हाँ गुरुदेव, मैंने कहा प्रणाम, और दूसरी बात ये मेरा ये बहुत भाग्य है, ऊंचा भाग्य है, सौभाग्य कहूंगा कि मुझे आज उस शख्सियत के साथ में आवाज बांटने का मौका मिल रहा है, जिनको मैं अपना आइडियल समझता हूँ। आप मेरे गुरु हैं और गुरु के साथ में जब आवाज़ बांटने का मौका एक शिष्य को मिलता है तो उससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं होती। यकीन मानिए मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है आपसे बात करते हुए, और ये महसूस करते हुए मैं कहने वाला हूँ कि मैं तो क्या, मेरी पीढ़ियाँ तक तर गई हैं कि भी आज रमेश मराठा सर के साथ में मेरी भी आवाज़ उनके साथ ही चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको सुन के सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, लेकिन हम आपको सुन सुन के सीख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: सर अपना मोल हीरा कब जानता है।
0: आपका प्यार है, आपका दुलार है, इसके लिए मैं आपका भरपूर शुक्रिया भी अदा करता हूं। और आप लोग काम करते हैं वहां पे, हम लोग सुनते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत मौका देते हैं आपके रेडियो के जरिए, हमारी आवाज मुख्तलिफ हमारे जो लिस्टर्स हैं उन तक पहुंचती है। तो ये मैं तो आपका एहसानमंद हमेशा रहता हूं कि आप हमें एक छोटा सा मौका देते हैं, एक जगह देते हैं। बड़ी मुश्किल से प्रसारण में इस तरह की जगह जब मिलती है तो अपने आप को हम भाग्यशाली मानते हैं।
2: आपकी भावनाओं में, आपके शब्दों में आशीर्वाद की बरसात होती है, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि सर ये प्रेम, ये आशीर्वाद और ये अपना हाथ इस तरह से बनाए रखिए, बस और किसी चीज की ऐसी आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता के लिए, भारत सोपुरी जी के लिए। भारत सोपुरी एक न्यायत ही बेहतरीन इंसान है, उनकी जो पूरी टीम है, आप साथ है उस टीम के साथ, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। आप तरक्की करिए, ऊंचाइयों को छुइए, ये हमारी कामना भी है, ये हमारी अभिलाषा भी है।
1: गुरु जी, रमेश मराठा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, इस समय हमारे जो श्रोता है वो आपको सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 पर, आपका जो प्यार, आपका जो आशीर्वाद हम सब पर बना रहा है, बना रहेगा, आप इस समय हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोता हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, ताकि हम वही बात करें जो रखे उनसे सरोकार।
0: बिल्कुल भारत जी, देखिए आजकल सोशल मीडिया है तो रेडियो के पास काफी चैलेंजेस है रेडियो सुनना, लेकिन इसके बावजूद रेडियो लोग सुनते हैं और रेडियो सुनना चाहिए। मैं तमाम लिसनर्स से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप रेडियो सुनिए, रेडियो पे आपको बेहतरीन प्रोग्राम मिलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। भारत सोपुरी बहुत मेहनत करते हैं, रेडियो वितस्ता पिछले 3 सालों से बेहतरीन काम कर रहा है। आप रेडियो सुनिए, अगर आपको कहीं पे कोई कमी खलती है वो आप लिखिए जरूर, और मुझे लगता है कि रेडियो वितस्ता की पूरी टीम उसको सुधारने में कोशिश करेगी और आप तक बेहतरीन प्रोग्राम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, रेडियो वितस्ता के साथ बने रहिए, रेडियो सुनते रहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस तीसरी वर्षगांठ, अगर हम वेब रेडियो की बात करेंगे तो आज 8 साल हमने पूरे करे, और अगर हम सामुदायिक रेडियो की बात करेंगे, एफएम 90 की बात करेंगे तो 3 साल हो गए, तो कुल मिला के इन 8 साल के उपरांत हमारे गुरुजी हम सबके लिए, नरेश सर के लिए, मेरी टीम के लिए, भारत जी के लिए, आप क्या आशीर्वाद और किन शब्दों में आप कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, दिल से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और देखिए रेडियो जो है इसमें शॉर्टकट नहीं है
1: जी,
0: और रेडियो जो है आपकी आवाज, आपका जो उच्चारण है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो दमदार होनी चाहिए
1: जी,
0: तब जाके आपका लिस्टर आपके साथ जुड़ेगा। और सबसे खास बात है, आजकल अगर आप अपने लिस्टर्स को रेडियो के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप गांव में जाइए, रेडियो से जो लिस्टर्स है उनके पास जाइए, उनकी आवाज रिकॉर्ड करिए, और जाहिर है कि वो जब एक आदमी की जब आप किसी गांव में आवाज रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर है कि वो पूरे गांव को बताएगा कि मेरी आवाज रेडियो पे आएगी और आपके जो लिसनर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा। और यही रेडियो का एक मूल मंत्र है। और दूसरी बात यह है कि रेडियो एक साफ सुथरा मीडियम है, इसको साफ सुथरा मीडियम बरकरार रखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, और आप करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपका जो रेडियो है दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और ऊंचाइयों को जरूर छुएगा, और जरूर एक परचम जो है कामयाबी का वो जरूर आप फहराएंगे। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, नरेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरी टीम जो आपकी विदस्ता की टीम है उनको मेरी तरफ से प्यार दुलार और मोहब्बतें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आशीर्वाद के अभिलाषी हम हमेशा रहते हैं। आप यूं ही हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी गलतियों को सुधारें, तभी हम एक अच्छे प्रसारक या अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं, ताकि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद। जी हाँ, ये थे हमारे गुरुजी रमेश मराठा जी, जो इस समय हमारे साथ जुड़े थे जम्मू से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने उनकी आवाज को सुना होगा और आप उनकी आवाज रेडियो विदस्ता पर हमेशा सुनते रहते हैं। और आज ये विद्यमान हमारे साथ थे, इनके बगैर शायद हम इस रेडियो की कल्पना सोच भी नहीं सकते, और हमेशा हर दम ये हमारे साथ होते हैं। चलिए हम आते हैं अब अपने टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे नरेश जी से, जो अम्बाला मैं रह के इस रेडियो विदस्ता की नींव बनाने में हमेशा साथ रहे और हमारे साथ कदम ब कदम शाना ब शाना चलते रहे। नरेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारा ये 8 साल का सफर है, उस सफर में आप मेरे साथ, रेडियो विदस्ता के साथ, रेडियो विदस्ता टीम के साथ हमेशा बने रहे। आपने अलग अलग कार्यक्रम दिए, आपने फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम किया, आपने जो सकारात्मक कहानियां हैं उनमें ऐसी कहानियां आपने रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाई, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, जहां पर युवा जो बच्चे हैं वो भी मजबूर हो गए उन कहानियों को सुनने के बाद, अपने पेरेंट्स के प्रति उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और किस हिसाब से आपने श्रोताओं

0: टीवी का और लोगों को जो आदत बन गई है ये सास बहु वाले धारावाहिकों की या कुछ और इस प्रकार के जो प्रेम मोहब्बत के कार्यक्रम आते हैं, यकीन मानिए सुपोरी साहब, कई बार तो ऐसा होता है कि कमरे में से उठ के जाना पड़ता है, पूरा परिवार बच्चों के साथ ऐसे कार्यक्रम देख भी नहीं सकता।
1: एकदम सही कहा,
0: सभी मर्यादाओं को ये लोग लांग चुके हैं
1: जी,
0: नहीं समझते कि एक परिवार के साथ में शर्म आनी महसूस हो जाती है। हाँ, लेकिन रेडियो ने आज भी अपनी मर्यादा को कायम रखा है, आज भी अपने संस्कारों को कायम रखा है। कभी भी आप रेडियो के ऊपर ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक इतने सालों में न सुन पाए होंगे जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं, बच्चे के सामने कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही। और रेडियो आपको सिर्फ मनोरंजन ही तो नहीं देता, जानकारी भी देता है, इसलिए सुनिए रेडियो, अवश्य सुनिए, औरों को भी सुनाइए। अब जो बात आप कह रहे हैं उसके ऊपर आता हूं। जहां तक बात है इन सालों के बीच में जो सफर में, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके साथ में रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे अपने साथ में रखा है। जो आपने मुझे अपने साथ में दौरान रखा है, मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से कि भाई जानकारी भी लोगों को दी जाए, मनोरंजन भी लोगों का किया जाए। और उस वक्त के बीच में तो खास तौर से जिस वक्त कोविड का दौर था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, हमने कहा था लोगों से, हमने एक वादा किया था रेडियो दस्ता के माध्यम से कि हम आपके घरों में खुशियों की होम डिलीवरी देंगे, और वो होम डिलीवरी हमने दी भी, मनोरंजन भी दिया, लाइव कार्यक्रम भी दिए, लघु कथाएं भी दी, और प्रयास किया कि लोगों को अकेलापन महसूस ना हो
1: जी।
0: हम वो करते रहे। मैं इसको अपनी खुश नसीबी समझता हूं कि मुझे वो मौका मिला, वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे आपने दी, शायद जिसके लायक मैं नहीं भी था, तब भी आपने मुझे ये मौका दिया। और मेरी खुशकिस्मती है कि रेडियो विदस्ता के साथ मुझे जोड़ने का ये मौका मिला। ये जो आपने बात की है कि 31 अगस्त 2018 से लेकर और आज तक, मुझे दिखता है कि ये पौधा है जिसको हम लोगों ने रोपा था, इसको सींचना हमारा ही काम है। तो जब तक मेरी रगों का में खून है, जब तक मेरी सांस में सांस है, ये जब तक मैं कुछ करने के लायक हूं, तब तक मैं रेडियो विदस्ता के साथ था, रेडियो विदस्ता के साथ हूं, और रेडियो विदस्ता के साथ रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है।
1: शर्मा जी, जो आपकी ये बातें हैं, क्योंकि इस समय अंबाला के श्रोता हमें सुन रहे हैं, और अंबाला के ही श्रोता नहीं सुन रहे हैं बल्कि हमारी जो इंटरनेट से स्ट्रीमिंग होती है पूरी विश्व में सुनी जाती है, पर हम, क्योंकि हमारा फोकस केवल अंबाला है तो हम अंबाला की ही बात करते हैं। हमारा मकसद केवल अंबाला तक ही सीमित है, चाहे हमारी आवाज़ पूरे विश्व में चली जाए। जो आपके शब्द है शर्मा जी, यही आपको महान बनाती हैं, ग्रेट बनाती हैं, हमारे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बनते हैं। आप कहते हैं कि मैंने आपको कहा आप मेरे साथ चलिए, बट मैं कहता हूं कि आपने इस रेडियो विदस्ता के सफर को अपने साथ चलाया, हम उसके हिस्सेदार बने, एक टीम बने, तब जाके आज हम अंबाला के लोगों के साथ रूबरू हैं इस समय एक लाइव सेशन में। और जो हमें सुन रहे हैं, मैं सभी को ये भी जरूर कहूंगा कि अपना फीडबैक भी हमें भेजें हमारे स्टूडियो के नंबर पर। इसी के साथ जुड़ा शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंबाला के लोग और जो श्रोता है वो हमसे क्या अपेक्षा रखें।
0: देखिए, एक सीधी सी बात है कि जब कहीं कोई आवाज सुनी ना जाए
1: जी,
0: रेडियो विदस्ता वो आवाज बनना चाहता है। यानी आपके गली मोहल्ले के बीच में समस्याएं हैं
1: जी,
0: आपके पड़ोस में आपकी समस्या है, आपके घर में आसपास में गंदगी है, सफाई नहीं हो पा रही है, नालियां खराब हुई पड़ी हैं, सड़कें खराब हैं, समय पर पानी नहीं आता, शुद्ध पानी नहीं आता, ये कोई भी आपकी समस्या है, आप हमसे जुड़िए ना, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। क्योंकि भरत सपोरी ने एक सपना देखा था, उसी सपने को साकार करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिनकी आवाज़ नहीं

0: वॉइसलेस की वॉइस है रेडियो विदस्ता। जो भी आपकी समस्या है आप हमें बताइए, हम आपकी समस्या को प्रशासन तक लेकर जाएंगे। अम्बाला की ही बात नहीं है, आवश्यकताएं तो पूरे प्रदेश में हैं, पूरे देश में हैं। जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक हम वादा करते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, आपकी आवाज हम बनेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत बड़ी बात कही है और मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी लोगों से हमारा संपर्क होता है, चाहे वह हमारे श्रोता है चाहे वह हमारे जानकार है, हम उन्हें अनुरोध करते हैं, निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं कि वो स्टूडियो में आए बात करें। बट बहुत सारे लोग हमें सुनते तो जरूर है पर वो स्टूडियो में आके अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। जैसे आपने समस्याओं की बात की, हमारा जो ये प्रसारण वशिष्ठ नगर दयालबाग से होता है और अगर आप हमारे एरिया की समस्याओं को देखें, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। जो हमारे यहाँ पर एमसी है, हमने उनको कई बार अनुरोध किया कि वो आए अपनी बात को रखें। मुझे नहीं ये समझ आता है कि वो क्यों नहीं आना चाहते हैं या वो अपनी बात क्यों नहीं रखना चाहते। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो वो अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं या वो शायद बोलने में थोड़े से शर्माते हैं। पर जब हम सामाजिक रूप से लोगों के बीच होते हैं तो हमें हर एक सवाल का जवाब तो देना पड़ता है। जैसे हमारे पास कुछ सुझाव आते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने हमें ये जो प्रोग्राम सुनाया था ये हमें पसंद नहीं आया, तो हम कोशिश करते हैं कि उस प्रोग्राम को दोबारा हम प्रसारित ना करें। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो आपने प्रोग्राम प्रसारित किया हम दोबारा वो सुनना चाहते हैं, हम उसको पुनः प्रसारित भी करते हैं। और सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि जो ये सफर है 31 अगस्त 2018 को शुरू हुआ था पर 1 नौ 2023 को भारत सरकार की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से लाइसेंस मिला था एक सामुदायिक रेडियो का, जो अंबाला के लिए ये स्वीकृत हुआ था। यानी कि ये जो सामुदायिक रेडियो है ये बात अंबाला की करेगा, बात अंबाला के लोगों की करेगा, उन लोगों की बात करेगा जो हाशिए पर है, उन लोगों की बात करेगा जिनके पास आज तक कोई भी नहीं गया है। तो हमारी हमेशा कोशिश रही है उन इतिहासकारों को, उन कवियों को यहां हम बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि लोगों तक वो जान सकें। और खास करके जो फौजी भाई हैं हमारे, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश को बचाने के लिए दी है और जो इस समय हमारे जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए शर्मा जी आपने एक प्रोग्राम फौजी भाइयों का किया, तो उसके पीछे आपकी क्या भावना थी और किस तरीके से जब आप वो फौजी भाइयों से बोलते हैं माइक के माध्यम से, वो जो भावना है वो कहां से आती है?
0: देखिए, वास्तव में होता क्या है कि जब तक हम उस चरित्र को बीच में नहीं घुसते ना, हमें इन भावनाओं का पता नहीं लगता। होता क्या है, जब कोई फौजी अपने घर से दूर सरहदों के ऊपर होता है, उसको बहुत चिंता होती है अपने परिवार की और अपने देश की। एक सबसे बड़ी जो चाहत होती है उसकी होती है छुट्टी। बहुत कुछ सोच रखा होता उसने, छुट्टी में जाऊंगा, घर टूटा हुआ है थोड़ा रिपेयर कराऊंगा, माँ का इलाज कराना है वो कराऊंगा, बहू के भी अपने यानी उसकी पत्नी के भी सपने होते हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, तो उसकी छुट्टी के ऊपर। छुट्टी के लिए ललायित रहते हैं फौजी भाई और दिल उनका चाहे घर में होता है, शरीर उनका सरहद पे होता है। तो उनकी उन भावनाओं को मैंने समझा कि अगर मैं अपने घर से दूर हूं तो क्या कहूँगा और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। सीधी सी बात यह है कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, उनकी भावनाओं को उनके परिवारों तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों ने
1: एक
0: किया,
1: माध्यम बन सके।
0: जी जी, वो हमने माध्यम बनने के पश्चात ये प्रयास किया कि फौजी भाइयों के जो भावनाएं हैं उनके उनके परिवारों के प्रति, उनको हमने जोड़ने का एक पुल के तरह से कार्य किया है। और यही प्रयास किया कि किसी तरीके से अगर हम किसी भी एक आवाज को उसके दिल को सुकून पहुंचा सकें तो हम धन्य समझेंगे, हम समझेंगे कि हमारा रेडियो चलाने का, हमारा इतनी बातें कहने का जो मकसद है वो सार्थक हो गया है।
1: सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि 8:30 बजे आप सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक 8:30 बजे आप सुनते हैं सकारात्मक कहानियां, जो आप तक ले आते हैं नरेश शर्मा जी, जो आज इस समय लाइव हमारे साथ इस लाइव सेशन में हैं। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप एक कहानी, एक सकारात्मक कहानी, एक पॉजिटिव स्टोरी आप लोगों के लिए ले आते हैं, और मैं देखता हूं हमारे फीडबैक में जो हमें जानकारी मिलती है, लोगों पर, उनके मन पर उन सकारात्मक कहानियों का असर जरूर होता है। तो ये कितना बड़ा काम आप रेडियो के माध्यम से करते हैं लोगों के लिए, तो आप उन सुनने वालों, उन श्रोताओं से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो कहानी सुन के सिर्फ अपने तक सीमित रखें, या वो और अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को उस कहानी का जो सार है वो पहुंचाए?
0: देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लघु कथाएं रेडियो विस्तार पर प्रसारित की जाती है ना, वो बेमकसद नहीं होती है
1: जी।
0: हर कहानी के पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। तो मेरा तात्पर्य मात्र इतना होता, पहली बात तो यह कि कहानी की भावनाओं में जाना होता है
1: जी।
0: हम सिर्फ मुंह से कहानी कह दें और लोग कान से सुन लें, बात खत्म नहीं होती है
1: जी।
0: यहां से शुरुआत होती है। तो जब हम कहानी कहते हैं और इस प्रकार से कहानी को कहते, कहानी को महसूस करके कहते हैं, तो उसमें हम चरित्र खुद बन जाते हैं। जब खुद बनते हैं तो बात दिल से निकलती है, और जब दिल से निकलती है
1: तो दिल तक पहुंचती है।
0: जब दिल तक बात पहुंचती है तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप चाहे वो कहानी को उतना गौर मत कीजिए, उसके ऊपर उतना ध्यान मत दीजिए, लेकिन उस कहानी के उद्देश्य पर ध्यान अवश्य दीजिए। आपको याद होगा कोविड के दौरान उन्होंने एक कहानी हमने कही थी, गुप्ता जी की कहानी।
1: यस।
0: उसके बीच में गीत के चंद बोल थे
1: जी,
0: कसमें बादे प्यार वफा सब बातें हैं,
1: बातों का क्या।
0: मैं चाहूंगा कि जो लोग भी मेरी कहानी रेडियो विस्तार पर सुनते हैं, उस कहानी के उद्देश्य को समझें और उस उद्देश्य को अपने जीवन के बीच में अमल में लाएं, तब तो हमारा कहानी कहने का कोई लाभ है। और दूसरी बात, ये आपको कहानी कैसी लगी वो आप रेडियो स्टेशन पे फोन करके बता सकते हैं, किसी और माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन ये भी तो बताइए कि आप कैसी सुनना चाहते हैं। सिर्फ सुनना ही चाहते हैं कि उसको अपने जीवन में उतार कर कुछ उद्धार भी करना चाहते हैं
1: जी।
0: अगर दहेज के ऊपर कहानी है, दो परिवारों ने दहेज लेना छोड़ दिया, तो हम समझेंगे हमारा कहानी कहने का मकसद
1: पूरा हो गया,
0: हो गया, वरना इधर से कही उधर को गई।
1: शर्मा जी, आपको मैं एक कहानी याद दिलाता हूँ। आपने कहानी की है वृद्ध आश्रम, जिसमें एक माता और पिता पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, शायद अपने लिए जूते नहीं खरीदते हैं, पर बच्चों की कोई कमी अधूरी नहीं रखते। और एक स्टेज आता है जब अब वो वृद्ध हो चुके हैं और बच्चे उन्हें कहते हैं कि पापा, आपको हम दोनों को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, हम इस मकान को बेच देते हैं, क्योंकि हमने अब बच्चों की जरूरतें पूरी करनी है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है। और वो माता पिता इतने सक्षम होते हैं, वो उस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाते हैं और उन लोगों को आश्रय देते हैं जो ऐसे, जिनके पास ऐसे पुत्र हो जो अपने माता पिता की कदर नहीं करते, उनकी मेहनत की कदर नहीं करते हैं। और ये कहानी जब युवा बच्चों ने सुनी और उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास आई और उनके आंखों में आंसू थे। तो क्या वास्तव में जिंदगी में ऐसे होता है और ऐसे लोग होते हैं जब आपने उसको अपने उस इमोशन से, उन भावनाओं से आपने उस कहानी को कहा? मैं भी जब सुनता हूं मैं भी भावुक होता हूं। उस कहानी के बारे में कुछ बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: देखिए, हजारों कहानियां आपने रेडियो विस्तार पर लोक कथाओं के रूप में मुझसे सुनवाई हैं
1: जी।
0: किसी एक विशेष कहानी के बारे में कहने का लाभ नहीं। हाँ, फिर भी एक बात जरूर कहता हूं कि ये जो वृद्ध आश्रम की आप बात कर रहे हैं, जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं, जहां पर उनको अपना घर ही पूरा वृद्ध आश्रम बनाना पड़ गया सिर्फ उनके बच्चों की सोच की वजह से, कि जहां पर वो लोग सिर्फ ये चाहते हैं हमें माँ बाप का वसीयत जो है, उनका जो धन दौलत मकान जमीन जायदाद ये मिल जाए, और हमारे माँ बाप चाहे अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में उनको छोड़ना पड़ जाए। एक स्पष्ट सी बात है, अभी इस रेडियो सेशन से पहले, लाइव सेशन से पहले, थोड़ी देर पहले मैं रेडियो दस्ता की टीम के साथ बात कर रहा था
1: जी।
0: तो उस बातचीत के दौरान एक बात हो रही थी कि देखिए, कुछ भी रुकता नहीं है, और ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आज आपके श्रोताओं को बता रहा हूं
1: जी।
0: अगर तो आप मान लेते हो तो अच्छी बात है, वरना प्रकृति अपने आप आपसे मनवा लेगी,
1: मनवा लेगी,
0: क्योंकि कुछ तो रुकना नहीं है। आज हम जवान हैं, कल को हमने भी बूढ़े होना है, और ये समय का चक्र जो चल रहा है ये चलता ही रहेगा। आज वो चक्र हमारे माँ बाप के ऊपर है, कल को वो चक्र हमारे ऊपर भी आएगा। तो आप ये देख लीजिए, जैसा आप बोएंगे वैसा
1: ही काटेंगे जी।
0: क्या आपने अपने माता पिता के लिए बोया है, वो अपने लिए काटने के लिए तैयार रहिए। स्पष्ट सी बात है, इसमें प्रकृति साफ आपको कह रही है। अगर आप की कर बबूल का बीज बोते हैं तो आम की उम्मीद रखेंगे
1: जी?
0: नहीं होगा,
1: नहीं होगा।
0: तो ये तो आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए।
1: श्रोताओं को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, ये शर्मा जी हैं और जब ये कहानी कहते हैं तो अलग सवाल है, पर इस समय ये हमारे साथ रूबरू हूं। हम चाहते हैं कि इनकी दिल की बात को हम जाने और इस लाइव सेशन की समाप्ति की ओर हम हैं। शर्मा जी आपसे ये जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, भारत सोपोरी को आपने अपनाया, आशीर्वाद दिया, साथ में रेडियो वितस्ता को आपने अपनाया, आप रेडियो वितस्ता, भारत सोपोरी और उनकी टीम को कहां देखते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, फिर भी वही बात कहता हूं, समय रुकता नहीं
1: जी,
0: न रुका था न रुका है और
1: न रुकेगा।
0: समय बढ़ता रहेगा और साथ में बढ़ता रहेगा रेडियो वितस्ता, रेडियो वितस्ता का परिवार। मंजिलें आती रहेंगी, आगे बढ़ते रहेंगे, आज आप बढ़ा रहे हैं इस परंपरा को, कल
1: कोई और
0: बढ़ाएगा, लेकिन ये रुकने वाली चीजें नहीं है। ये समय का वो हिस्सा है जो कालांतर से चला आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। फिर मेरी शुभकामनाएं आज भी, आने वाले समय में भी रेडियो वितस्ता के साथ हैं। और एक बात और बताई देता हूं, मैंने जैसा कि एक बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि समय रुकता नहीं है, समय का चक्र चलता रहता है, मैं रहूं न रहूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं रेडियो वितस्ता के साथ थी, हैं और रहेंगी। और आप इस चीज को स्पष्ट मानिए, आज अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और वहां गलती से अपना पर्स छोड़ आते हैं, क्या करते हैं आप, भागते हैं वापस एकदम अपना पर्स लेने के लिए
1: जी।
0: एक पर्स के लिए जब आप वापस उस दुकान पर भाग जा सकते हैं, जब मैं पूरी दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो मैं किसी ना किसी रूप में तो यहां जरूर आऊंगा, और आकर शक्ल भले ना होगी, आकार भले ना होगा, इस निर्विकार के बीच में किसी ना किसी अंश में मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं सबके साथ रहेंगी, आपके साथ रहेंगी, रेडियो वितस्ता के साथ में रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलूंगा किसी मोड़ पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।
1: शर्मा जी, इन बातों से तो मैं इस लाइव का समापन तो नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो हमारी आवाज है, जो तरंगों में के रूप में हमारी श्रोताओं तक पहुंचती है, उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप भारत जी में एक अच्छी बात जिसको मैं बढ़ाना चाहूं, और एक जो मेरी कमी है जिसको मैं ठीक करना चाहूं, इन्हीं शब्दों के साथ में और आपके एक संदेश के साथ में इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा।
0: देखिए, जहां तक इम्प्रूवमेंट की बात है, ठीक करने की बात है, हर पल कुछ सिखा रहा है, ये समय है, सब कुछ दिखा रहा है, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, असंख्य सीखने की कलाएं हैं, बस एक जुनून, एक जज्बा बनाए रखिए, जिंदगी आपको बहुत दूर तक ले जाएगी।
1: सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा, शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपके आशीर्वाद और आपके साथ के लिए और आपके शब्दों के लिए, और हम आपसे वादा करते हैं जब तक ये सांस है तब तक हम लोगों की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे, आपके मार्गदर्शन में, आपके साथ के साथ। और जरूर श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आप भी आसपास जरूर देखिए और देखिए कि आप इस जीवन में क्या कर सकते हैं। ये जीवन आज है और कल है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, तो आज आप अपना शत प्रतिशत दीजिए, जैसे हमने कोशिश की है और उसमें भी बहुत सारी गलतियां होती है, पर जब हम कुछ करेंगे तभी तो गलती करेंगे, और इन गलतियों से हम कभी हारते नहीं है, हम गलतियों से सीखते हैं और एक समय आता है जब हम जरूर जीत जाते हैं। और ये जो FM 90.0 MHz रेडियो वितसा की आवाज है, ये भी बहुत सारी मेहनत का एक फल स्वरूप है। और श्रोताओं, आपको एक बार फिर पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारी तीसरी वर्षगांठ पर, जो कल भी जारी रहेगी। कल भी 11:30 बजे हम आपसे रूबरू होंगे, हमारे साथ अलग मेहमान होंगे, उनसे जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कुछ श्रोताओं को भी बुलाएं, वो रेडियो वितस्ता के बारे में क्या जानते हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप रेडियो वितस्ता और रेडियो वितस्ता टीम और सभी श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, आप अपना मोबाइल पर अपने मोबाइल में अपना एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कीजिए और हमारे स्टूडियो के नंबर पर भेजिए, अपना फीडबैक भी भेजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर आप नोट करिए, हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं शब्दों के साथ नरेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ बात करने के लिए। आपने कुछ समय के लिए तो हमें भावुक भी किया, पर जिंदगी चलने का नाम है, जिंदगी आगे चलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता हमाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज बातचीत होगी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा से। आपकी बातचीत का विषय है हड्डियों और जोड़ों में आम तकलीफें।
2: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
3: शुक्रिया जी।
2: डॉक्टर साहब, आज जिस बीमारी के बारे में हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे, हड्डियां या जोड़ों की क्या क्या तकलीफें होती हैं?
3: ऑर्थो में हड्डियों या जोड़ों की तकलीफों को हम बड़े दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है ट्रॉमेटोलॉजी या हॉट ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें चोट लगने से जो भी तकलीफ हड्डी में आए, जैसे फ्रैक्चर हो जाना, गिरने से हो, एक्सीडेंट के कारण हो, कोई मारपीट के कारण हो जाए, किसी भी तरह से जब हड्डी टूटे, उसको हम हॉट ऑर्थोपेडिक्स में लेते हैं। दूसरा है कोल्ड, जिसमें हड्डियों की बीमारियां, जैसे इन्फेक्शंस ले लीजिए, या उम्र के साथ जोड़ों का घिस जाना, जैसे अर्थराइटिस, या कोई ट्यूमर्स हो जाए बोन में, या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, उसको हम कोल्ड, जो लंबी बीमारियां, उसमें ले लेते हैं।
2: हमारे शरीर में कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जो बड़ी नाजुक होती हैं। अभी आपने टूटने की बात की, या एक्सीडेंट से टूट जाती हैं, या मारपीट से टूट जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी हड्डी है जो इस तरह एकदम से टूट जाती है?
3: फ्रैक्चर, हड्डी के टूटने को फ्रैक्चर बोलते हैं। और बॉडी के किस हिस्से में हड्डी जो है वो कितना वजन उठाती है, तो हड्डी की ताकत उस हिसाब से कुदरत ने हो की है। जैसे टांग की और बाजू की हड्डियाँ, ये सबसे स्ट्रांग है, और स्पाइन की हड्डियाँ, जैसे ब्लॉक, एक के ऊपर एक ब्लॉक लग के वर्टीब्रा बन के बनती हैं, वो कंपैरेटिवली बाजू या टांग की हड्डियों से कमज़ोर हैं। तो छोटी, जैसे रिस्ट की स्मॉल छोटी छोटी बोन्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम है। तो ओवरऑल स्पीकिंग, लॉन्ग बोन्स, जो लंबी हड्डियाँ, वो ताकतवर हड्डियों में आती हैं, और छोटी छोटी जो हड्डियाँ हैं उनको कमज़ोर हड्डियों में बांट सकते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई हड्डी टूट जाती है, क्या करना चाहिए?
3: सबसे पहले तो फर्स्ट एड, जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर में, जब भी हड्डी टूटे, उसमें दो प्रकार का हो सकता है फ्रैक्चर। एक हम जिसको सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ अंदर से हड्डी टूटी है, लेकिन ऊपर से चमड़ी में कोई सुराख नहीं हुआ, कोई ज़ख्म नहीं हुआ। दूसरा है जब हड्डी भी टूटती है और साथ में ऊपर ज़ख्म हो जाता है, जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं।
2: जी।
3: तो दोनों में आपने स्प्लिंट तो लगाना है। स्प्लिंट मतलब आप बाहर से सपोर्ट लगाएंगे उस टांग या बाजू को, जहाँ भी लगी है पट्टी से बांध देंगे, और इमिजिएटली कोशिश करेंगे कि उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाएं, जहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। तो फिर उसका एक्सरे करा के, फिर डिपेंड करता है प्लास्टर से, ऑपरेशन से, जैसे भी इलाज चले। तो शुरू तो ऐसा ही होता है।
2: जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इसलिए ये पूछा था कि हड्डी अगर टूट जाती है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि होता है कि जब इस तरह की कोई समस्या पैदा होती है तो एकदम से हम घरेलू इलाज करना शुरू करते हैं।
3: बिल्कुल, घरेलू इलाज में, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमतौर पर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होता है, लेकिन गांव में अक्सर यही होता है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन इतनी अवेलेबल नहीं है, तो लोग उनको जैसे मालिश करने वाले के पास या कोई बांधने वाले के पास ले जाते हैं। तो वो लोग बेचारे पुराने तरीके से बांध देते हैं। बांधना तो है आपने भी, बट उसमें कितना ज़ोर लगा के आपने बांधना है, वो तो इतने ज़ोर से बांध देंगे कि आपका जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बंद हो जाता है।
2: जी जी।
3: कई बार गैंग्रीन हो गया, कई बार लोगों की टांगे बाजू काटनी पड़ी है कि इतनी ज़ोर से उन्होंने बांध दिया। तो उसमें
2: बांधना भी है, इस तरह से कि ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें किसी तरह की रुकावट पैदा
3: ना हो, उसमें रुकावट ना आए।
2: जी जी।
3: तो उसके बाद कोशिश यही करनी चाहिए कि स्प्लिंट आप किसी से भी लगवा लो, लेकिन एक दो दिन के अंदर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं, तो ताकि आगे आपका पक्का इलाज हो जाए।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कहीं पर इसकी सुविधा नहीं है, जैसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में समय लगता है, तो आपने कहा बांधना चाहिए, उसके लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप?
3: उसमें यही है कि एक
2: घरेलू
3: तरीके से बांधने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल हम जो ऑर्थोपेडिक्स में लेते हैं, वो है कि जो भी हड्डी हो उसका आगे वाला और पीछे वाला जोड़ दोनों को आप इमोबिलाइज करेंगे, मतलब जो फट्टी जो नीचे लगाते हैं, आप फट्टी लगाएं कोई भी चीज़ लगाएं, उसकी जो लेंथ है वो हड्डी की लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों जोड़ आगे का पीछे का ले लेंगे, मरीज को दर्द नहीं होगा और जो टिश्यूज को ज़्यादा नुकसान हिलने डुलने से वैसा होना वो नहीं होगा।
2: जी ऐसा भी होता है जब कोई गिर जाता है, स्कूटर से गिर जाता है, एकदम से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद उसकी मालिश करना शुरू करते हैं।
3: हाँ,
2: ये किस हद तक सही है?
3: मालिश से तो हम लोग तो मालिश, जब फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर में मालिश का रोल नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं कि मालिश से आपको फ़ायदा होगा, बट आगे ही आदमी को तकलीफ़ है, चोट लगी हुई है, कुछ टूटा है अंदर, आप उसको हिला के कम्फर्ट देने के बजाय उसको डिसकम्फर्ट दे रहे हैं, उसको और दर्द हो रहा है।
2: अच्छा, क्या करना चाहिए अगर इस तरह के
3: कुछ
2: हालात
3: भी
2: पैदा
3: हो,
2: होते हैं?
3: हाँ, कहीं भी किसी को चोट आए तो उस हिस्से को आप रेस्ट में ले जाओ। अगर आपका जोड़ कहीं टल गया उसमें भी आप हिलाओगे तो दर्द ज़्यादा होगा, हड्डी टूटी है तब भी हिलाओगे दर्द ज़्यादा होगा, तो कोई भी चोट हो उसमें आपने उसको इमोबिलाइज, मतलब उसको उस हिस्से को आप रेस्ट में ले जाओ और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके आगे इसका इलाज चले। डॉक्टर का काम है हड्डी को अपनी जगह पे जहाँ टूटने से पहले थी वहाँ ला के रख देना है, बाकी तो कुदरत कंट्रोल कर रही है, जोड़ी की तो कुदरत,
2: जी
3: तो डॉक्टर का सिर्फ यही काम है। तो वो हड्डी के टूटने के बाद पहले के जो 1-2-3 हफ्ते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुदरत तो वेट नहीं करेगी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और हड्डी जुड़ना शुरू करेंगे, लेकिन जब जैसे ही हड्डी टूटती है वैसे ही जुड़ना शुरू हो जाती है।
2: जी जी
3: तो पहले 3 हफ्ते में सॉफ्ट कैलस,
2: ये
3: नेचुरल प्रोसेस है।
2: जी जी
3: तो उस प्रोसेस में अगर आपने हड्डी अपनी जगह पे डॉक्टर ने ला दी, जुड़ना शुरू हो गई, आमतौर पे आपने देखा होगा कि लटक जाते हैं केस कि इसकी हड्डी नहीं जुड़ रही, क्योंकि उसका फर्स्ट इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता।
2: यानी 2 सप्ताह आपने कहा कि
3: 2 या 3 सप्ताह में
2: बहुत इम्पोर्टेंट,
3: बहुत इम्पोर्टेंट, फर्स्ट 3 आर वेरी इम्पोर्टेंट।
2: जी यानी डॉक्टर साहब, हम इस बात को फिर से दोहराएंगे कि अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है या कोई स्कूटर से गिर जाता है तो इमिजिएटली आपने उस हिस्से को रेस्ट देना है,
3: उस हिस्से को
2: जहां जहां आपको लगता है टूटने के चांसेस हैं। डॉक्टर साहब, अब हमारे इस प्रोग्राम का एक गीत संगीत तो कहते हैं कि आजकल के इस तनाव भरे माहौल में बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, तो आपकी पसंद का अगर कोई गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे जो आपकी पसंद हो।
3: गीत में तो जगजीत सिंह जी का ही गाना सुना दीजिए, वो तुमको देखा तो ख्याल आया।
2: जी जी जी, ये फिल्म साथ साथ से है।
3: साथ
2: जी जी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज सुने।

0: सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना आ गया, लोग बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हैं, तो जिस्म में, हड्डियों में और मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है। जिस्म को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसमें उतनी ताकत रहती है, और पोस्चर जब आपका बैठने का ठीक नहीं हो और जिस्म में ताकत ना हो तो आपके मसल थक जाते हैं, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो इसी की वजह से हैं। बाकी बीमारियां जैसे आर्थराइटिस हम कहते हैं,
1: जी
0: वो एज रिलेटेड भी हो सकती हैं, या कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ रिलेटेड भी हो सकती हैं, या कोई पुरानी जोड़ में चोट हो उसके कारण भी
1: आर्थराइटिस
0: हो
1: के
0: सकती है।
1: सिम्टम्स क्या होते हैं?
0: आर्थराइटिस मीन्स जोड़ में दर्द, किसी भी जोड़ में दर्द को हम आर्थराइटिस बोलते हैं, और सेकेंडरी है कोई चोट लगी हो या जोड़ में कोई बीमारी हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी आर्थराइटिस, लेकिन दैट इज सेकेंडरी टू समथिंग।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे एक शिकायत मिलती है, आपके पास भी मरीज इस तरह के आते होंगे कि घुटने में दर्द है, ये
0: बिल्कुल,
1: एक नई बीमारी जैसे पैदा हुई है।
0: घुटने में दर्द का कारण एक्सरसाइज ना करना और पोस्चर, जैसे हम जमीन पे बैठ जाते हैं, एक जगह बैठे रहे, एक्सरसाइज कोई नहीं की, स्टिफनेस आ जाती है, शुरू शुरू में स्टिफ हुआ, ध्यान नहीं किया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते आपका जोड़ अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर सूजन आ जाती है, तो ग्रेजुअली वो आर्थराइटिस वाला साइकिल चलना शुरू हो जाता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको किसी ना जैसे भी, जब भी आपको जोड़ में दर्द शुरू हो, वैसे ही सूजन से पहले, या अगर सूजन पहले आ जाए तो डॉक्टर की सलाह लें और पोस्चर प्रॉपर करें, इलाज कराएं, और अल्टीमेटली आपको एक्सरसाइज पे ही आना है।
1: जी,
0: आर्थराइटिस में एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा रोल है, मेडिसिन्स का उतना रोल नहीं,
1: यानी एक्सरसाइज का बहुत जरूरी।
0: एक्सरसाइज का बहुत रोल है और प्रॉपर डाइट।
1: जी, तो आमतौर पे एक घुटने में दर्द महसूस किया जाता है।
0: उसमें चोट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ में कई लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट में चोट आ जाए, कोई मेनिस्काई है, कोई क्रूशेट लिगामेंट्स है, किसी कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किसी में चोट आ जाए उसके कारण भी हो सकता है, या आमतौर पर गाउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसके कारण कई बार एक घुटन जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है, या कई
1: जी
0: गंठिया जिसको कहते हैं रूमेटॉइड, उसके फिर प्रेजेंटेशंस डिफरेंट है,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसको रूल आउट आप करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, जो डायग्नोसिस उस हिसाब से
1: हमें
0: इलाज
1: कैसे
0: करते
1: पता
0: हैं।
1: चलेगा कि ये गाउट से हमें घुटने की दर्द महसूस होती है?
0: आप हिस्ट्री जब देंगे डॉक्टर को तो डॉक्टर डिफाइन करेगा ये किस कैटेगरी में फिट होता है, बट
1: जी
0: गाउट में मोस्टली मिड नाइट पेन्स होती हैं और लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी, नॉन ट्रोमेटिक, चोट नहीं लगी होगी, सूजन होगा, और कई बार हिस्ट्री भी होती है, जेनेटिक है, पानी लोग कम पीते हैं, डाइट्री हैवी फूड्स, नॉन वेज खुला, और आजकल ड्रिंक्स विंक्स ज़्यादा लेते हैं लोग, ये सब चीज़ों से ये रिलेट करके अल्टीमेटली क्लिनिकली आप बनाते हो।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से गर्दन में हम दर्द कभी कभी महसूस करते हैं, या आमतौर पे कमर में दर्द महसूस करते हैं, और कमर में दर्द की जब बात आती है तो लेडीज आमतौर पे कमर में दर्द महसूस करती हैं।
0: हाँ, कमर में दर्द का सबसे ज़्यादा कारण लेडीज़ में इसलिए है क्योंकि उनको ज़्यादा काम झुक के करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा काम करें उतनी एक्सरसाइज भी चाहिए बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, तो उतनी एक्सरसाइज हमारी लेडीज़ कर नहीं पाती, और डाइट का इतना ख्याल नहीं, तो अगर ये पोस्चर अपना थोड़ा झुकने वाला कम करें, एक्सरसाइज करते रहें, बीच बीच में दवाई भी लेते रहें, तो
1: जी
0: मेरे ख्याल में ये फ़र्क पड़ सकता है, पर ज़्यादा ये पोस्चर के साथ ही है,
1: जी जी
0: या डिस्क हो सकती है बीमारियाँ, वो कुछ हो, बड़ी तेज़ दर्द, दर्द को भी आप डिवाइड करते हो एक्यूट या क्रॉनिक पेन्स, एक्यूट मतलब इतनी सीवियर बड़ी ज़्यादा पेन है उसके और कारण है।
1: अच्छा, जब हम गर्दन में दर्द महसूस करते हैं तो सिरहाना जब हम इस्तेमाल करते हैं सोने के वक्त, उसमें किसी तरह का ख्याल रखना पड़ता है, जब आप
0: हाँ
1: पोस्चर्स
0: जी
1: की बात
0: हाँ,
1: आपने की?
0: इवन पोस्चर में हम स्पाइन दोनों, सर्वाइकल जिसको गर्दन का कह रहे हैं, दूसरा लंबर जो नीचे कमर का दर्द है, इसको अगर आप देखें तो एनाटॉमिकल नेचर ने इसको थोड़ा कर्वेचर दिया, नेक का भी कर्वेचर थोड़ा आगे को है और लंबर स्पाइन जो कमर का है उसका भी आगे को है, तो नेचुरल कर्व्स जो हैं इनको आदमी हमने सपोर्ट करना है। जब हम सोते हैं कोशिश करें कि तकिया आपका गर्दन के नीचे आए ताकि आप नेचुरल कर्व को सपोर्ट करें, और जब काम करें तो ज़्यादा देर झुक के मत करें। लिखने पढ़ने वाले या कंप्यूटर वाले लोग हैं, वो अपना लिखने के लिए सामने राइटिंग डेस्क रख लें, मॉनिटर का लेवल अपने आईज़ के लेवल पे ले आएं, और चेयर जो आपकी स्टिफ हो सो दैट आप बिल्कुल सीधा बैठें, तो स्ट्रेट रहने से स्पाइन के ऊपर लोड कम हो जाता, जब भी आप 90 डिग्री से आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो आपके मसल्स कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, तो मसल का काम करने का एक लेवल उस

0: थ्रेशोल्ड के बाद, उस लेवल के बाद वो दर्द करना शुरू करेगा, जिसको फटीक पेन या वो बोलते हैं। तो फटीक को आपने बढ़ाने के लिए, उसका टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए आपने भाई विगर एंड वाइटलिटी के लिए एक्सरसाइज, तभी एक्सरसाइज और पोस्चर का सबसे ज़्यादा रोल है।
1: आजकल लोग कम चलते हैं पैदल, तो शायद इस वजह से भी इस तरह की बीमारियां सामने
0: बिल्कुल
1: आती
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: ठीक कह रहे हैं। जिस्म को आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग होता है, और जितने मसल स्ट्रांग हो डायरेक्टली उतनी बोन स्ट्रांग हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अब हम अपनी बातचीत तो जारी रखेंगे, लेकिन एक आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहेंगे हम अपने सुनने वालों को,
0: अभी आप लता जी का कोई गाना सुना दीजिए,
1: लता जी की आवाज में कोई भी गीत सुनना चाहेंगे।
0: कोई भी सुना।

0: डॉक्टर राकेश शर्मा हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की बीमारियां हैं तो हड्डियों को तंदुरुस्त रखने के लिए किस तरह की खुराक लेनी पड़ती है?
1: हड्डियां तो कैल्शियम और फास्फोरस मेन दो एलिमेंट्स हैं जिससे बनी हैं, प्लस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कोलेजन है, दैट इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन का नेटवर्क बनता है, उसके बीच में जो है कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट। तो जो भी डाइट कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर हो, जैसे दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बंद नहीं करने। प्लस बाकी और भी डाइट्स हैं, जैसे गुआवा है, उसमें भी कैल्शियम अच्छा है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें सारे मिनरल्स और वो विटामिन्स भी आते हैं, फ्रूट्स, ये रेगुलर लेते जाएं। लेकिन अगर इन चीज़ों से, अगर कई आदमी हैं जिनको दूध हजम नहीं होता, दही वो खा नहीं रहे या खा नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को दवाइयाँ लेनी पड़ती है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, वो फिर आप रिप्लेस करते हैं दवाइयों से। लेकिन बेसिक चीज़ जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू, वो तो चल रही है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है?
1: हर मसल का जो है बॉडी में, हर मसल का अपना एक एक्शन है, और जिस मसल को आप स्ट्रांग करना चाहते हैं उसके मुताबिक आप एक्सरसाइज करें। जैसे कमर के लिए आमतौर पर उल्टा लेट के या सीधा लेट के, वो डिपेंड करता है मरीज़ की सिचुएशन पे, वैसे आप समझाते हैं, ऐसे गर्दन पे भी। बट बेसिक प्रिंसिपल है, जो मसल का एक्शन है उसी को आप बार बार करा के उस मसल को ताकतवर बनाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, जब हमारे बुजुर्ग जो होते हैं, क्या उनको भी कोई खास डाइट लेनी पड़ती है अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए?
1: 50 साल के बाद औरत हो या मर्द हो, दोनों की हड्डियों में कमजोरी नेचुरल आ जाती है। जैसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं फीमेल्स में, मेल्स में भी एक्टिविटी कम हो जाती है, डाइट वैसी नहीं रहती, तो उसमें मोस्टली हम जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ये बड़ी कॉमन बीमारी ही समझ लीजिए, बीमारी ही है। बट उसमें भी डाइट तो वही रहेगा, कैल्शियम वाला मेन, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स एंड प्रोटीन डाइट, बट एक्सरसाइज का रोल उसमें भी बहुत है। कई बार आपको इन चीज़ों के अलावा फीमेल्स में कई बार हार्मोन्स देने पड़ते हैं, जैसे HRT करते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या वैसा एनाबॉलिक्स मेल्स में देते हैं आप, वो सपोर्टिव थेरेपीज हैं, बट मेन स्टे जो है वो एक्सरसाइज ही रहता है, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज एंड प्रॉपर पोस्चर।
0: जी,
1: अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं तो टूटेंगी भी नहीं जल्दी और थकेंगी भी नहीं जल्दी।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो पैदल चलना कितना जरूरी है
1: बहुत जरूरी
0: एक इंसान के लिए?
1: हाँ, पैदल पैदल चलना बहुत ज़रूरी है, और सारे जोड़ हिलाने, सारी मांसपेशियां दिन में कम से कम 2-3 बार हिला लें, तो एक्शन ही लाइफ है।
0: जी, दवाइयों को अवॉइड करना है?
1: दवाइयां जब ज़रूरत हैं, जब ज़रूरी हैं तब तो खानी है, बट ऐसे तो डाइट और एक्सरसाइज से ही पूरा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं हो तो फिर तो आपको दवाई खानी ही है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और हड्डी रोग क्या ताल्लुक है आपस में
1: यूरिक एसिड जो
0: बढ़ना?
1: नॉर्मली, हाँ हाँ जी, यूरिक एसिड, ये दिस इज़ ए नॉर्मल बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली ये यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, बट कई बार डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में या और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से लेवल बढ़े या ना बढ़े, इसके क्रिस्टल्स जॉइंट्स के अराउंड, इनकी एक टेंडेंसी है,
0: जी
1: जॉइंट के आसपास बैठ जाते हैं और वहाँ सूजन पैदा करना शुरू कर देते हैं,
0: तभी पेन होती है,
1: तभी पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए आमतौर पे सबसे जो टिपिकल क्लासिकल, जिसको हम बुक पिक्चर बोलते हैं, वो पाँव के अंगूठे के बिल्कुल पास, मिडनाइट आदमी सोया और सुबह देखे वो एकदम जगह लाल हो गई, सूजन हो गया, तो ऐसे किसी भी जोड़ में हो सकता है। तो आमतौर पे ये हड्डियों के आसपास ही होता है, इसलिए हड्डियों वाले यूरिक एसिड के साथ ज़्यादा रिलेटेड है।
0: आमतौर पे बात होती है, जब इस तरह की कोई हड्डी बीमारी की बात होती है तो यूरिक एसिड का नाम पहले आता है।
1: पहले आता है
0: जी, तो कैसा कैसे बचा जाए अगर
1: इसके
0: इस
1: लिए,
0: तरह की कोई परेशानी हो
1: यूरिक
0: एसिड?
1: तो हाँ, यूरिक एसिड के लिए तो स्पेसिफिक तो दवाई तो है ही है, प्लस इसके लिए परहेज सबसे ज़रूरी है, कि आपकी बॉडी की हाइड्रेशन पूरी रहनी चाहिए, पानी खूब पिए, और डाइट्स वैसी नॉन वेजिटेरियन डाइट कम लें, और वेजिटेरियन में भी कुछ ऐसी हैं जैसे राजमा है, बैंगन है, भिंडी है, ये चीज़ें थोड़े कम
0: आलू
1: लें,
0: वगैरह।
1: हाँ ये थोड़ा कम लें, पानी का इस्तेमाल खूब करें।
0: डॉक्टर राकेश शर्मा, अब चलते चलते आपकी पसंद का गीत हम आपके हमारे सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: अब तो वही सुना दीजिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात दूर तलक पहुंच जाएगी, पहुंचनी चाहिए।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आर के शर्मा से की गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट वार्ता का विषय था हड्डियों और जोड़ों में आम तकलीफें। आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: होगा मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें।

0: FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
3: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: राम, अगर हम तुम्हें 5,00,000 रुपया दें तो क्या तुम दूसरा शरीर स्वीकार करोगे?
2: नहीं, कभी नहीं।
1: अच्छा राम, अगर हम तुम्हें 1,00,000 तोला सोना दे तो वापस जाओगे?
2: अयो नोको नोको नोको, अगर वो सोना लेके मैं नीचे गया तो वो लोग मेरे को स्मगलर समझ लेंगे।
1: राम यहाँ। कुछ पियोगे?
2: क्या पिलाएंगे आप मेरे को? चाय पिलाएंगे या लस्सी पिलाएंगे?
1: नहीं, सोमरस।
2: सोमरस क्या होता महाराज? अरे अरे अरे, दारू की बात कर रही थी। किधर की दारू पिलाएंगे? गोलकुंडे की या स्कॉचिस की?
1: नहीं, ये देवता लोगों का जलपान है, इसको पीने से तुम मत तो हो जाओगे।
2: मत हो जाऊंगा क्या? नीचे तो मैं कंट्री पीता था खाली। जल्दी पिलाओ महाराज।

警察

0: ही दालच महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन

0: था ना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों? उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: Ilk hey dalaç mehel. Ilk hey Lata Mangeshkar. Ilk hey Radio Mitasta. हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम आधारित है डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।
2: साहित्य की पाठशाला की मैं अक्षुण्य विद्यार्थी हूँ। शब्द शब्द जोड़कर भावनाओं के धागे में पिरोकर बांधने का प्रयास करती हूँ। नहीं जानती अपने संग्रह में शिल्प विषय संप्रेषणीयता के मानक पर कितनी खरी हूँ, लेकिन कहते सुना है अच्छा वही लिखते हैं जो कभी खराब लिखता है। कविता लिखना यदि सरल है तो सरल लिखना भी कठिन है। जानती हूँ मुझे उर्दू नहीं आती, अपने अनुभव आसपास के परिवेश बोली को ही आधार मान लेती हूँ। मूर्धन्य साहित्यकारों की फेरिस्त में सबसे पीछे खड़ी हूँ। इन गजलों को पढ़कर कभी तालियां नहीं बटोरी, ये बस एक एहसास है जो मन से मन तक पहुंचती है। ये शब्द है आज के हमारे मेहमान के, जो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ और आपके साथ रहेंगे, पर गजलों और कविताओं के माध्यम से। इनके लिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीएल मिश्र साहिल इस कवित्र के लिए लिखते हैं। वैसे तो गजलकार ने छंद कुंडलियां दोहे गीत गजल सभी में अपनी भरपूर कलम चलाने का प्रयास किया है और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुई हैं, जो इनकी अमूल्य निधि है। एक और प्रसिद्ध गजलकार गीतकार श्री धर्मराज देशराज जी इनके लिए लिखते हैं। इनकी गजलें नई पीढ़ी के लिए नया अध्याय है। प्रस्तुत गजलें सदियों से चली आ रही उस परंपरा का खंडन करती है जब गजलों में बज्म साकी शराब कासिद खत पैमाने हुस्न और इश्क हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ गजल विधा में इंसानी जज्बात भूख पीड़ा दर्दो गम ने लेकिन लिया है, जो इस गजल संग्रह की खूबी है। एक और कवि समीक्षक समाजसेवी विजय सिंह विजय कुछ इनकी शेर बोल के कह रहे हैं। गजब है इश्क भी देखो नहीं करता यहाँ शिकवा, गमों की चार दीवारी हमें हंसकर निभाना है। समाज को सच्चाई दिखाते हुए शब्दिक सौंदर्य पैदा करती हुई शेर आईना भी हकीकत कहेगा, आंख मुझसे जरा तो मिलाओ। दिल की भावना व्यक्त करती हुई और मनोकामनाओं को उठाती आशावाद से प्रेरित शेर इस जन्म में मिले जो नहीं गम नहीं, उस जन्म का पता तो बताना सनम। बहुत ही सादगी के साथ शिकायत करने की कला गजलकारा डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कलम में ही दिखाई दिया। मगरूर हम सनम है मगरूर दिल की राहे, मशगूल तुम हुए तो कैसे करें इशारे। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी लेके आया हूं वितस्ता गीत माला का एपिसोड 10। आज आपको रूबरू कराऊंगा देश की बेटी शिक्षा विद्वान एक सशक्त महिला छत्तीसगढ़ राज्य से डॉक्टर माधवी गणवीर के साथ, पर उनकी गजलों और कविताओं के माध्यम से वितस्ता गीत माला के दौरा। आइए शुरू करते हैं आज डॉक्टर माधवी गणवीर के लिखे गजलों गीतों से, और साथ ही सुनाऊंगा गीत और गजलें आपके मनोरंजन के लिए भी। आज हम इनके प्रकाशित कविता संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से कुछ कविताएं सुनाते हैं। पहले शुरू करते हैं कविता संग्रह रेत की नदी से।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, हो रही जिस्त ये बसर तन्हा, ढूंढती फिर रही नजर तन्हा, वास्ता अब नहीं मुझे उससे, छोड़कर जो गया ये घर तन्हा, चार पैसे कमाने की दुन में छोड़ना पड़ रहा शहर तन्हा, चांद पाने की एक ख्वाहिश में हो रही जिस्त बेहुनर तन्हा, उम्र के इस मुकाम पे आकर अब तो कटता नहीं सफर तन्हा, माँ पिता आज बट गए अब तो, हो गए वो इधर उधर तन्हा, गुनगुनाती है माधवी अक्सर, हम हुए आज इस कदर तन्हा, हम हुए आज इस कदर तन्हा। लेते हैं एक और कविता। जख्म सबको दिखाना नहीं है, इस जहां को रुलाना नहीं है, नेकियां जो करें याद रखिए, नेकियों को बुलाना नहीं है, बेवफा जो हुए देख अपने, ये वफा का जमाना नहीं है, मौत ही है जहां में यकीनी, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जान तुम पर लुटाते फिरे हम, क्या करूं ये बताना नहीं है, रूठना उनका जायज कहूं क्यों, बेवफा को मनाना नहीं है। माधवी दिल है गर खास रब का, दिल किसी का दुखाना नहीं है, दिल किसी का दुखाना नहीं है।

डॉक्टर माधवी घनवीर जी लिखती हैं, ना हम होंगे न ये संसार होगा, जमाने में सदा ही प्यार होगा, यकीन है एक दिन वो आएगा ही, मोहब्बत से भरा संसार होगा। सनम जब रूबरू हम तुम रहेंगे, तभी तो प्यार का इजहार होगा। कभी छत पे अकेले आइएगा, सुकून से चांद का दीदार होगा। जहां नफरत नहीं बिकती मोहब्बत, नहीं ऐसा कोई बाजार होगा। मिले महबूब मुझको आपसा घर, यकीनन दिल मेरा गुलजार होगा। मोहब्बत से नवाजे रब सभी को, नहीं कोई कभी लाचार होगा। तस्वुर में ही बस देखा उन्हें है, हकीकत में भी कब दीदार होगा। मुसीबत में खड़ा जो माधवी के, वही मेरा भी सच्चा यार होगा, वही मेरा भी सच्चा यार होगा। एक और कविता में डॉक्टर माधवी घनवीर जी लिखती हैं, जो दिल दे गवाही हकीकत वही है, सुकून दिल को मिलाता हो चाहत वही है। हमें हाल दिल भी बताना ना आया, तुम्हें भी हमी से शिकायत वही है। मिला जो सहारा सफर में तुम्हारा, मेरी जिंदगी की अमानत वही है। चलो छोड़ आए पुरानी कहानी, भुला दे गमों को, मोहब्बत वही है। सफर को सुहाना बना के चले।

लेते हैं कुछ और कविताएं। काव्य संग्रह है रेत की नदी से। डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, पास आकर जरा मुस्कुरा दीजिए, जिंदगी खूबसूरत बना दीजिए, यूं ही चुप ना रहो यार, कुछ तो कहो, बात दिल की कभी तो बता दीजिए, खिल उठेगा चमन मेरे दिल का सनम, आप अपना हमें घर पता दीजिए, आज महफिल सजी है तुम्हारे पिया, एक नई फिर गजल तो सुना दीजिए, बात बीती बिसारी उन्हें छोड़ दो,

ख्वाब आंखों को कोई नया दीजिए। गाव नासूर ये बन न जाए कहीं, जख्म पे आज मरहम लगा दीजिए। जो तुम्हारा कभी बन ही सकता नहीं, यार छोड़ो उससे तुम बुला दीजिए। बेवफा बेवफा ही रहेगा सदा, चाहे दौलत जहां की लुटा दीजिए। काम आए मुसीबत में जो माधवी, दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए। दिल से उनको हमेशा दुआ दीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी गंभीर जी लिखती हैं, मुकद्दर आज जो रूठा हुआ है, सितारा फिर कहीं टूटा हुआ है। दगा करके गया है कोई अपना, चलो हम मानते अच्छा हुआ है। लुटा है आशियां मेरा यहाँ पर, अंधेरा दर्द का बिखरा हुआ है। जरा अपनी खुशी से गालिए हम, गजल से बागबां महका हुआ है। दिखा मुझको तेरा साया यहाँ पर, मेरी नजरों का फिर धोखा हुआ है। हुई मुद्दत गया परदेस बेटा, अभी तक माँ का दिल बैठा हुआ है। कभी तो रूबरू आकर मिलो तुम, मिले ख्वाबों में भी अरसा हुआ है। सुनाई माधवी ने आप बीती, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है, जहां का चेहरा जो बीगा हुआ है।

डॉक्टर माधवी गणवीर जी की कुछ कविताएं इसी काव्य संग्रह से रखता हूं। वो लिखती हैं, प्यार का दीप मन में जला लीजिए, उम्र भर जिंदगी का मजा लीजिए, रूठ कर कोई जाए न तुमसे कभी, हर बशर को ही यारो मना लीजिए, खत्म हो जाएंगी दूरियां बीच की, रंजिश आज मन की हटा लीजिए, बाग खुशियों से पल में महक जाएगा, नेक दिल एक साथी बना लीजिए, चैन मिलता नहीं यार खोकर जमीर, चाहे कितनी भी दौलत कमा लीजिए, इश्क का सबक सीखिए तो जनाब, आंख मुझसे तो आओ लड़ा लीजिए, है सुकून ही बहुत ये कहे माधवी, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए, एक पल तो किसी का दुआ लीजिए। एक और कविता में डॉक्टर माधवी जी लिखती हैं, अब नहीं कम में गुजारा चाहिए, बाजुओं का हक तो सारा चाहिए, भीख में मोती नहीं मंजूर है, ना रहम का ही सहारा चाहिए, आसमां में छेद कर दूं आज मैं, बस मेरे रब का इशारा चाहिए, क्या हताशा क्या निराशा मैं करूं, साथ पर मुझको तुम्हारा चाहिए, हर तरफ हो प्यार का साया सदा, खूबसूरत वो नजारा चाहिए, फिर जन्म हो तो ये हरी है प्रार्थना, हिंद में ही फिर दोबारा चाहिए, माधवी की चाह है सबसे जुदा, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए, रोज खुशियों का पिटारा चाहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला जारी है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं कविताएं जिनको अपने शब्दों से प्यार से संवारा है डॉक्टर माधवी गणवीर जी ने। लेते हैं इनके एक और काव्य संग्रह से कुछ गजलें। बहुत सोचना दिल लगाने से पहले, मोहब्बत की रस्में निभाने से पहले, मेरी याद दिल से मिटाने चला वो, मगर सोच लेना बुलाने से पहले। सदा खुश रखेंगे ये खाई थी कसमें, जरा सोच लेना रुलाने से पहले। नहीं होती आवाज लाठी में उसके, यही सोचना दिल जलाने से पहले। मिटा है सदा दिल तुझी पे ये जाना, सनम देखना पग बढ़ाने से पहले। मिलेगी न मंजिल तुम्हें इस जहां में, नए ख्वाब अपने सजाने से पहले। सलामत रहो माधवी की दुआ है, यही मांगती जान जाने से पहले, यही मांगती जान जाने से पहले। डॉक्टर माधवी गणवीर जी एक और कविता में लिखती हैं, इश्क में आज हद से गुजर जाएंगे, साथ दे दो जरा हम संवर जाएंगे। हाथ में हाथ तेरा सदा जो रहे, एक दिन आएगा यूं निखर जाएंगे। हाल दिल का जरा पूछ लो तुम कभी, देखना हम वहीं मुस्तकर जाएंगे। साथ मिलता रहे हमें सनम का सदा, इस जहां से हम बाहुनर जाएंगे। हर गजल में फतह मिल रही है आजी, वक्त के साथ हम भी निखर जाएंगे। भूल जाऊं तुम्हें कामना तो नहीं, जो मुकदर कहें कर गुजर जाएंगे। खेल में जीत भी हार भी है बनी, सोच कर तो नहीं हम बिखर जाएंगे। है दुआ माधवी की सदा तुम बढ़ो, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे, साथ हम भी तेरे हम सफर जाएंगे।

लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी दो गजलें काव्य संग्रह फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी गणवीर जी लिखती हैं, खताएं मेरे तुम गिनाते रहोगे, भला कब तलक यूं सताते रहोगे। डगर ये कठिन है मगर राह चलना, दिलो जा हमें पे लुटाते रहोगे। जरा रूठ जाए सनम हम कभी तो, कहो यार कब तक मनाते रहोगे। तुम्हें दिल दिया है खबर ही कहां है, मुझे कब तलक आजमाते रहोगे। सजा दूं मैं अर्थी तेरे नाम की तो, खता ये बला क्या बुलाते रहोगे। कसम है तुम्हें जो मिटे हो अदा पे, वही नाज नखरे उठाते रहोगे। कहीं हो न जाए रुस्वा यहां यूं, रखो लाज मेरी बचाते रहोगे। सुनाती यही माधवी भी कहानी, सजन ख्वाब हर पल सजाते रहोगे, सजन ख्वाब हर पल सजाते रहोगे। ये आखिरी कविता वो लिखती हैं, जख्म अपने यहां हम दिखाएं किससे, हर स्तम जो हुआ है बताएं किससे। हर तरफ जोर है दुश्मनी का बड़ा, जिंदगी तू बता आजमाएं किससे। मेरे अपने मेरा आशियां लूटते, कौन अपना पराया बताएं किससे। गीत गजलें हम ही थे तराने हम ही, टूटती सांस है गुनगुनाएं किससे। रात का है अंधेरा बड़ा ही घना, तू बता जिंदगी अब डराएं किससे। ये शिकायत सदा ही करे माधवी, सारे अपने ही रूठे मनाए किससे, सारे अपने ही रूठे मनाए किससे।

ये था आज का वितस्ता गीतमाला का एपिसोड 10। आज हमने आपको डॉक्टर माधवी गणवीर जी की लिखी कविताएं गजलें सुनाई, उनके काव्य संग्रह रेत की नदी और फूल सी गजल से। डॉक्टर माधवी जी, आपका आभार, आपने हमें ये काव्य संग्रह भेजे। ये कार्यक्रम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की ओर से आपको सादर भेंट। आप सभी श्रोताओं, आपको ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मैं भारत सोपोरी आपसे चाहूंगा इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था डॉक्टर माधवी गणवीर जी के गजल संग्रहों रेत की नदी और फूल सी गजल पर, सहयोग निया जैन और राहुल अलियान का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, Hamsafar, Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
3: आप सुन रहे हैं अम्बाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

गीतों पे मबनी प्रोग्राम पेश है। धीरे धीरे अब ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम इन बादलों में कहीं खो सा गया है। मैं हूं रमेश मराठा, नमस्ते।

तेरे इंतजार की चाहत में लुट गई, खामोश हो गए, फना हो गए, भीगती बारिशों में चिल चिलाती धूप, सुबह शाम रात की चुप्पी में मैंने तेरे लौटने तक इंतजार किया।

सी आहट होती है तो दिल कहता है, कहीं वो तो नहीं। इन हवाओं के झोंकों में तुम्हारे बदन की खुशबू से मेरी मायूसी टूट जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। शायद तुम आओगे, चलोगे मेरे साथ सफेद बर्फ की चादर पे, पिछले मौसम की तरह।

खामोशियों को मुअत्तर करती है। बस तुम्हारी आवाज सुनते ही और सुकून पाते हैं, मेरे हर दर्द की दवा बन जाते हैं आप। जाने अनजाने जब आईना देखते हैं तो तुम नजर आते हो, तुम ही नजर आते हो। जानता हूं ये समंदर है, इसमें तैरा नहीं जा सकेगा, पर न जाने इसको नापने की ख्वाहिश उभरती क्यों है। जानता हूं तुम्हें छूना एक ख्वाब की तरह है, पर फिर भी क्यों तुम्हें अपनी नींदों में शामिल करता हूं शब रोज़।

रफ्ता रफ्ता जिंदगी गुजर गई तन्हा, यूं ही तन्हा तन्हा। साथी थे पर छूट गए, अब ये रह गुजर भी है हमारी ही तरह तन्हा तन्हा। बस हम तलाशते हैं वो साथी जो कभी हमारे अपने थे, सिर्फ

काश तुम रोक लेती हमें चंद पलों के लिए, मुझे अपनी पनाहों में थोड़ी सी जगह देती, मुझे सहलाती, मुझसे प्यार करती, मुझे अपनी बाहों में लेती, मेरा हाथ थामती। मखमली मौसमों के संग चलते, मखमली मौसमों के संग चलते, मेरे अरमानों को गुलजार करती, मुझे अपना समझती, मगर यह हो न सका, यह हो न सका। काश तुम रोक लेते हमें

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम आप सुन रहे थे रमेश मराठा के साथ। दोस्तों, आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। चाहेंगे अब आपसे इजाजत।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। कोशिश करते हैं कि उन्हीं प्रोग्रामों को प्रसारित करें जो रखते हों आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:45। रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज की इस खामोश और सुरमई शाम में आप सभी प्यारे श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं आपका रेडियो साथी, रेडियो हमसफर, भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता की तीसरी वर्षगांठ पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं, जो हम 31 अगस्त और 1 सितंबर को मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में आज हमारे मार्गदर्शक श्री नरेश शर्मा जी आप सभी को बधाई देने के लिए हमारे स्टूडियो आए थे, और आज हमने एक लाइव शो भी किया था और जिसमें उन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और सभी श्रोताओं को संबोधित भी किया और पुरानी यादें ताजा हो गई। आशा करते हैं कि आपने सुना होगा उन्हें आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर 11:30 बजे के बाद। जी हां दोस्तों, आज इस रेडियो का सफर एक वेब रेडियो से शुरू हुआ था 31 अगस्त 2018 को। 5 साल की मेहनत के बाद भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी इसको एक सामुदायिक रेडियो बनाने में, जहां हमें फ्रीक्वेंसी अलॉट हुई थी 90.0। तो आप हमारी जो फ्रीक्वेंसी 90.0 पर हमारे प्रसारण सुनते हैं, कल हम इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाते हैं। और ये मनाने के लिए सारा श्रेय हमारे श्रोताओं को जाता है, क्योंकि श्रोता है तो रेडियो है। हमने भी कोशिश की है कि हम वही बात करें जो आपके दिल तक पहुंचे और आपके दिल से हो सरोकार। तो कल हमारे पास और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति होंगे स्टूडियो में, और 11:30 बजे कल हम एक बार फिर लाइव करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की क्या रेडियो विदस्ता अंबाला के जनता के दिलों तक पहुंची है या पहुंच रही है, या और कितने प्रयत्न हमें करने पड़ेंगे ताकि ये हर घर की आवाज बन सके। तो कल मेन दिन है और कल हम आपसे एक बार फिर रूबरू होंगे। अगर आप भी कोई अपनी बधाई संदेश भेजना चाहते हैं, अपने व्हाट्सएप में जाके अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये नंबर आपको हम कुछ समय के बाद फिर बता देंगे और नोट कराएंगे। और एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में नरेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज की महफिल को समेटने का। यकीन है कि आज की बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आप दिन भर हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे और रहेंगे भी आगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि इसके लिए दिल से शुक्रिया। जाने से पहले करते हैं आज के उस नाम की जिसने उर्दू पंजाबी साहित्य को एक नई पहचान दी, अमृता प्रीतम जी। पंजाब की धरती से निकली ये कलम इतनी ताकतवर थी कि बंटवारे के दर्द को उन्होंने अपनी मशहूर नज्म अज अखां वारिस शाहनू में इस तरह पिरोया कि आज भी वो नज्म पढ़ते ही रूह कांप उठती है। वो सिर्फ शब्दों की मलिका नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जिसने स्त्री मन की पीड़ा, संघर्ष और स्वतंत्रता को बेबाकी से कागज पर उतारा। और उनकी जिंदगी की कहानी भी किसी उपन्यास से कम नहीं थी। शायर साहिर लुधियानवी के लिए उनके दिल में जो एक तरफा मोहब्बत थी वो अधूरी रह गई, मगर उसकी तड़प उनकी कई रचनाओं में झलकती रही। फिर आया इमरोज का साथ, एक ऐसा रिश्ता जिससे समाज के किसी बंधन की जरूरत नहीं पड़ी। इमरोज ने बिना शादी के, बिना किसी शर्त के अमृता जी का साथ जीवन के आखिरी पड़ाव, आखिरी सांस तक निभाया। यह प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साथ नाम या रस्मों का मोहताज नहीं होता, वो सिर्फ समझ और सम्मान मांगता है। तो
तो दोस्तों अगर इस विषय पर बात करेंगे तो काफी सारा समय लगेगा। ये कुछ जानकारी हमने आज दिन आप सभी के साथ साझा की। और तो चलिए इस बेमिसाल कलाकार और कलमकार को श्रद्धांजलि देते हुए वितस्ता की वादियों को समर्पित एक शेर के साथ आज के प्रसारण को देते हैं विराम। आज की पंक्तियां यूं है, जिस तरह वितस्ता का पानी कभी थम कर नहीं बहता, जिस तरह वितस्ता का पानी कभी थम कर नहीं बहता, वैसे ही इश्क का किस्सा भी अधूरा नहीं रहता। कलम जो सच के लिए उठे वो कभी मिटती नहीं, कलम जो सच के लिए उठे वो कभी मिटती नहीं, अमृता जैसी सोच हर दौर में दिखती रहती है, अमृता जैसी सोच हर दौर में दिखती रहती है। तो ये था आज का विवरण, और अब कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। और कल एक बार फिर कल के लिए आप सभी श्रोताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कल हमारी तीसरी वर्षगांठ हम मनाएंगे आपके साथ, आपके बातों के साथ और आपके समर्पण के साथ। कल 1 सितंबर 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर घर परिवार कार्यक्रम एपिसोड 5 होगा, और हमारे साथ होंगी दीप्ति बाला शर्मा। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 29 आप सुनेंगे, जीवन में कभी हार ना माने, पेश करेंगे आरजे शिवानी। और 9:30 कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11, और 10:29 पर इनसे मिलिए एपिसोड होगा डॉक्टर नूपुर सिंह जी से बातचीत, जो हमारी पहली वर्षगांठ पर पहली शुरुआती दिन जो हमारे पास स्टूडियो में आई थी आज से 3 साल पहले। और 11:30 आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपके लिए लाएंगे एक लाइव शो जो बात करेगा आपके अंबाला की और अंबाला की श्रोताओं की। संगीत की सभा जारी रहेगी 6:00 भक्ति संगीत, और 6:30 शाम में गजल, और 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 3। और ये कार्यक्रम तैयार हमने किया है नफ्स अंबालवी के कविताओं पर आधारित। और उम्मीद करते हैं कि कल आप हमारे साथ पूरे दिन बने रहेंगे। 8:30 कार्यक्रम सोहना सफर, रमेश मरहटा होंगे हमारे साथ कार्यक्रम सुहाना सफर में, और कल की कड़ी है तुम हमारे ना हो सके। तो इसके साथ हम कल शाम को 9:00 करेंगे क्लोज प्रसारण, और आज के लिए भी बस इतना ही। और इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को, कल फिर मिलेंगे नई बातों नई आवाजों के साथ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का हर दिन सुबह 6:00 से रात के 9:00 तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।